0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और EFTA के बीच TEPA पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
2: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम

0: 19.1 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंटरेस्ट चैनल है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे नेल्सन मंडेला के विचार।
1: बात 20 अप्रैल 1964 की है। दक्षिण अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में नेल्सन मंडेला पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था। नेल्सन मंडेला सरकार की नस्लभेद और दमन की नीति का जोरदार विरोध कर रहे थे। मुकदमे के दौरान अपने बयान में उन्होंने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन अफ्रीकी जनता के लिए समर्पित कर दिया है। मैं श्वेत रंगभेद के खिलाफ लड़ा हूं और मैं अश्वेत रंगभेद के खिलाफ भी लड़ा हूं। मैंने एक मुक्त और लोकतांत्रिक समाज का सपना देखा है, जिसमें सब लोग बराबरी का जीवन जीते हैं और सबको समान अधिकार मिलते हैं। इस आदर्श के लिए ही मैं जिंदा हूं और अगर जरूरी हुआ तो इसके लिए मैं अपना जीवन भी दे दूंगा। नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा दी गई। 27 वर्षों तक जेल की यातना सहने वाले मंडेला विश्व के सबसे प्रसिद्ध बंदी बन गए। वे अन्याय के प्रति प्रतिरोध की जबरदस्त क्षमता की जीती जागती मिसाल थे। जेल की यंत्रणा और जेल से बाहर सरकार द्वारा अपने परिवार पर किए जा रहे अत्याचारों के आगे झुके नहीं। उन्होंने कहा, मैं समर्पण नहीं करूंगा, संघर्ष ही मेरा जीवन है। अपनी आखिरी सांस तक मैं आजादी के लिए संघर्ष करता रहूंगा। जेल में रहते हुए भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी द्वारा बताए गए सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते को अपनाया। गांधी जी ने अपने अहिंसक आंदोलन का पहला सफल प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। इसलिए मंडेला का मानना था कि भारत महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को गांधी जी ने गोद लिया था। मंडेला ने अपने देशवासियों से कहा कि अगर हम लोग एकजुट होकर दृढ़ता तथा अनुशासन पूर्वक काम करेंगे तो हमें आजादी का लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकेगा। शांतिपूर्ण उपायों से हम बहुत कठोर व्यक्तियों का भी मत परिवर्तन कर सकते हैं। आजादी की लंबी और कठिन लड़ाई में नेल्सन मंडेला के साहस, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की जीत हुई। अंततः रंगभेदी हुकूमत को झुकना पड़ा। मंडेला को ऐतिहासिक कारावास से मुक्ति मिली। दक्षिण अफ्रीका के सभी समुदायों को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हुए। वहां लोकतांत्रिक चुनाव कराए गए। नेल्सन मंडेला वहां के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। मंडेला ने अपनी सफलता का श्रेय गांधी जी को दिया। गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने के कारण उन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। उन्हें भारत से गहरा लगाव था। यही वजह है कि जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा की। मंडेला को भारत में एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। उन्हें यहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। यूं तो नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे गए, लेकिन उनका कहना था कि अगर आपने अपने समय में अपना कर्तव्य पालन किया और अपने साथियों की आशाओं पर खरे उतरे तो यही आपका सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार और महान उपलब्धि है। नेल्सन मंडेला जुल्म और असमानता के खिलाफ संघर्ष करने वालों के प्रतीक बन गए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उनके जन्मदिन 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। शांति, अहिंसा तथा मानवता के प्रति नेल्सन मंडेला की निष्ठा युगों युगों तक विश्व को प्रेरणा देती रही।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूँ। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: पुण्यम् इत्यन्तरेण अग्रे अस्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के कार्य शामिल हैं। इन्हें चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। दोनों देश दक्षिण दक्षिण सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुटजेटो अब्लाक्वा के साथ समझौतों का आदान प्रदान किया। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कालाकोट और राजौरी सेक्टरों का दौरा कर परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में सेना ने बताया कि सैनिकों ने उन्हें नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनाई गई सतर्कता, प्रशिक्षण, तालमेल और नवीन प्रथाओं सहित प्रमुख परिचालन तैयारियों की जानकारी दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने संजुक्ता मुखर्जी के गाए भजन सुने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। इस कार्यक्रम को पेश करने के लिए हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपकी साथ

0: अल्पना, जी हाँ, इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ और आपका सुबह का फेवरेट और बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

जी हाँ साथियों, सुबह सुबह मौसम का जादू ही कमाल होता है, और उस पर अगर आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान हो तो क्या कहने। जी हाँ, अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है तो आप दूसरों की ज़िंदगी भी खुशनुमा बना सकते हैं। तो बस प्यारी सी मुस्कान रखिए अपने चेहरे पर और अपने दिन का सफ़र शुरू करिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र और भी खूबसूरत होगा और साथ ही हमारे गीत उसको और भी उम्दा बना देंगे। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत।

तो साथियों, चाय की चुस्कियों के साथ आप भी तैयार हो रहे होंगे कोई ऑफिस के लिए, बच्चे स्कूल के लिए, और गृहिणियाँ अपना काम भी कर रही होंगी। लेकिन लेकिन लेकिन खूबसूरती तो इसमें है कि आप ये सब खुशी के साथ करें। जी हाँ, खुशी के साथ करिए और अपने आप को व्यस्त रखिए। व्यस्तता समझते हैं ना, व्यस्तता इस जीवन में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप व्यस्त हैं तो आप वैसे भी खुश रहेंगे और आपका हर पल खुशनुमा बीतेगा, क्योंकि आपके पास नकारात्मक चीज़ों को या नेगेटिव चीज़ों को सोचने का वक्त ही नहीं होगा। तो चलिए, हर पल को खूबसूरत बनाइए इस और प्यारे से गीत के साथ।

बहुत खूबसूरत पल कटेगा, क्योंकि हम हैं ना आपके साथ प्यारे प्यारे गीतों के साथ। और पल तब भी बहुत खूबसूरत कटता है जब आपके साथ कोई अपना हो और आप उससे अपनी बातें साझा कर सके। और हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, विश्वास कर पाए आप और ऐसे पे साझा करें जिस पे आपको पूरी तरह विश्वास हो। तो भरोसेमंद इंसान से अपने मन की बातें कहिए तो आप का हर पल और भी खूबसूरत कट सकता है। और चलिए अगला गीत सुनते हैं, एक और प्यारा सा गीत है, फिल्म कोई मिल गया सी।

यहाँ साथियों, पक्षी हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। वो यहाँ तक कि बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। और यही नहीं, सपनों की उड़ान भरने की कला भी हम पक्षियों से सीख सकते हैं, और साथ ही वर्तमान में जीने की कला। जी हाँ, अगर वर्तमान में आप खुशी से अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो ज़िंदगी में सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। बहुत सारी शिक्षा हमें मिलती है प्रकृति से और साथ में वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं से भी। तो ज़िंदगी में सारी चीज़ों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। तो अगला गीत सुनते हैं, आवाज़ है शान की।

जी हाँ साथियों, इसी तरह मुस्कुराते रहना चाहिए ज़िंदगी में, और आगे सफलता आपके कदम चूमेगी ही। तो छोड़े जा रही इसी प्यारे गीत के साथ आपको, क्योंकि समय अब इजाज़त नहीं दे रहा आगे और आपका साथ देने का, क्योंकि आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो, आप जो चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में मिले। तो अल्पना को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम के।

0: सी ऐसी हल्की।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 8 बजने को है, अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया।

सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिग्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद द ऑटो मेट्रो।
2: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
5: इन कार्यों को 4 विषयगत स्तंभों, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुँचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इसे

0: पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से ये दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर सीबीआई के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के ओएसडी सहित 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया, दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
0: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years as head of a government. Union Cabinet passes resolution to commemorate this landmark achievement. Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat G. Ramji scheme, marking 41% expansion from previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members of Global System for Mobile Communications Association, says technology must become a tool for inclusive and sustainable development. RBI to announce bi-monthly monetary policy this morning. IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets in the first T20 international, taking 1-0 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as Chief Minister of Gujarat. He became Prime Minister in May 2014. We have more from a correspondent.
3: To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of the vitality, vibrancy and maturity of the democracy. Mr. Vaishnav said that Prime Minister Modi has created history that is unique in any democratic country. He said there are very few countries in the world where the people have repeatedly extended their support to a single leader. The minister said this support has been given because of his style of functioning, his right policies and his clear and good intentions. The minister highlighted 10 major points of this cabinet resolution. The first point is the expansion of the vision of development from Gujarat to the entire country. He said Prime Minister Narendra Modi introduced several changes in Gujarat through his programs and policies for which Mr. Modi was honored across the world. The Gujarat model was recognized and appreciated across the world and was subsequently implemented across India. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
2: Vice President C.P. Radhakrishnan has greeted Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of service to the nation as head of government. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, Mr. Modi's journey as Pradhan Sevak has transformed the vision of inclusive development into a nationwide mission guided by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. He said across his visits to states and union territories, he has witnessed Bharat's visible transformation through improved connectivity, digital advancement, expanding opportunities and inclusive development. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu praised Prime Minister Modi, highlighting several core qualities that he believes makes the Prime Minister's journey exceptional. In an article in an English daily today, Mr. Naidu said clarity of vision, integrity, discipline, attention to detail, and above all the ability to execute make Mr. Modi an exceptional leader. The government has notified the schedule of permissible works under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VVG Ramji Act 2025, providing for 375 permissible works under the new Rural Works Framework. Ministry of Rural Development said the new schedule represents a 41% expansion over the 266 works under the previous framework. We have a report.
4: The works have been reorganized around four thematic pillars: water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works for extreme weather events and disaster preparedness. The water security pillar comprises 128 works, the highest among the four categories. It includes check dams, gully plugs, underground dikes, recharge septs, injection walls, rejuvenation of rivers, rivulets and nalas, reclamation of waterlogged land and renovation of field water distribution channels. Every work will originate through a bottom-up decentralized planning process under the Viksit Gram Panchayat plan approved by the Gram Sabha and will be tracked through the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Prime Minister Modi interacted with Global System for Mobile Communications Association GSMA board members at Seva Tirth yesterday, ahead of the India Mobile Congress. Mr. Modi stressed that democratization of technology is essential to ensure that no section of society is left behind. He emphasized the need to make technology and digital services affordable and accessible, particularly for the Global South, and highlighted the importance of taking technology to the last mile to prevent a widening digital divide. The 10th edition of India Mobile Congress will begin at Yashobhoomi in New Delhi today. With the theme Scale Without Boundaries, it will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation, while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the event tomorrow. The event will feature the ministerial program on investing in the next billion digital connections, CEO Roundtable, on the sovereign inflection and the future.

0: क्रिकेट में पहले T20 बैन अल-अक्वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इस तरह उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से शिकस्त हासिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सरबराहे हुकूमत की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी मुद्दत कार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें 12.5 साल गुजरात के वजीर आला और 12.5 साल वजीर आजम की हैसियत से शामिल हैं। आज ही के दिन 2001 में जनाब मोदी ने पहली मर्तबा गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। वो मई 2014 में वजीर आजम बने थे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए
2: तारीखी कामयाबी की याद में मरकजी काबीना ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें उनके तर्ज हुक्मरानी के सफर को उजागर किया गया। इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि जनाब मोदी की 25 साल मुद्दत कार भारतीय जमहूरियत की मजबूती का सबूत है। उन्होंने कहा कि एक आम खानदान से ताल्लुक रखने वाला ऐसा शख्स जिसने खुद को मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया और मुसलसल मुल्क की खिदमत कर रहा है, जमहूरियत की ताकत, पायदारी और पुख्तगी की एक बड़ी मिसाल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने ऐसी तारीख रकम की है जो किसी भी जमहूरी मुल्क में मुनफरिद है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जहां आवाम ने मुस्तकिल एक ही रहनुमा पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें अपनी हिमायत से नवाजा है। उनके मुताबिक ये हिमायत उनके काम करने के तरीके, दुरुस्त पॉलिसियों और वाजह और नेक इरादों की वजह से हुई। वजीर मौसूफ ने मरकजी काबीना की करारदाद के 10 अहम निकात को उजागर किया। पहला नुक्ता तरक्की के विजन को गुजरात से वसत देकर पूरे मुल्क तक फैलाने से मुतालिक है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपने प्रोग्रामों और पॉलिसियों के जरिए मुतअद्दिद तब्दीलियां मुतारिफ कराई, जिनके बाइस उन्हें दुनिया भर में एजाज से नवाजा गया। गुजरात के तरक्याती मॉडल को दुनिया भर में तस्लीम किया गया और सराहा गया, जिसके बाद इसे पूरे भारत में नाफिज किया गया। दिल्ली से कुमांदे पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि एक प्रधान सेवक के तौर पर जनाब मोदी के सफर से सबकी शमूलियत वाली तरक्की का विजन एक मुल्कगीर मिशन में तब्दील हो गया है, जिसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से रहनुमाई हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अपने दौरों में उन्होंने भारत की काबिल दीद तब्दीली देखी है। ये तब्दीली बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल तरक्की, मौक़ों की तौसी और सबकी शमूलियत वाली तरक्की के रास्ते हुई है। नायब सदर ने कहा कि जनाब मोदी की दूरंदेश क़यादत की एक बड़ी कामयाबी यह है कि इसके तहत 25 करोड़ अवाम को इंतहाई गुरबत से निजात हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी अहम तारीखी हुसूलियाबी है जिसे इंसानी तारीख कभी नहीं भुला सकती। जनाब राधाकृष्णन ने उम्मीद जाहिर की कि भगवान जनाब मोदी को अच्छी सेहत, खुशी और ताकत से नवाजे, जैसा कि वो भारत को सबकी शमूलियत, खुशहाली और 2047 तक विकसित भारत की जानिब सफर पर ले जाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज से अपने अवामी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया था और इस साल वो अपनी अवामी ज़िंदगी के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर नितिन नबीन आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करेंगे। उनके अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों से इस प्रोग्राम में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी VBGRAMG कानून 2025 के तहत काबिल इजाजत कानून की फहरिस्त जारी की है। इसमें देही कामों के नए फ्रेमवर्क के तहत 375 काबिल इजाजत काम बयान किए गए हैं। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि नई फहरिस्त में पिछले फ्रेमवर्क के 266 कामों में 41% कामों की तौसी की गई है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इन कामों को 4 मौजूआत के तहत दोबारा बयान किया गया है। ये मौजूआत हैं: पानी की हिफाजत, इंतहाई दर्जे का देही बुनियादी ढांचा, गुजर बसर से मुतालिक बुनियादी ढांचा और शदीद मौसम से मुतालिक वाकयात और कुदरती आफात के तनाजुर में तैयारियों के लिए खसूसी काम। पानी की हिफाजत के तहत 128 काम बयान किए गए हैं, जो 4 जुमरों में सबसे ज्यादा हैं। इसमें बांधों पर नजर रखना, नालियों पर ढक्कन लगाना, जेर जमीन सोते, पानी को वापस जमीन में पहुंचाने की शॉफ्ट्स, इंजेक्शन, کنویں دریاؤں کو دوبارہ تازہ کرنا،

0: छोटी नदियां और नाले जिन जगहों पर पानी जमा हो गया है उनकी बहाली, निज पानी को दूसरी जगहों पर पहुंचाने वाली नहरों की तजदीद के काम शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कहा है कि टेक्नोलॉजी सबकी शमूलियत और लगातार तरक्की का एक आलाकार होना चाहिए। जनाब मोदी ने कल सेवा तीर्थ में मोबाइल मुआसलात की एसोसिएशन के आलमी निज़ाम GSMA के बोर्ड अरकान से बातचीत की। ये बातचीत इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहली की गई जो नई दिल्ली में आज से इस महीने की 10 तारीख तक मुनाकिद की जाएगी। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि सभी को टेक्नोलॉजी की फराहमी लाजमी है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि समाज का कोई भी तबका पीछे नहीं रह गया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी और डिजिटल खिदमात को खास तौर पर आलमी जुनूब के लिए मुनासिब खर्च और काबिल रसाई बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने बढ़ते हुए डिजिटल फर्क को ख़त्म करने के लिए टेक्नोलॉजी को हर एक शख्स तक पहुँचाने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की सलाहियत को खासतौर पर तरक्की पजीर मुल्कों के लिए एक यकसर तब्दीली लाने वाली ताकत के तौर पर उजागर किया। डिजिटल और साइबर घोटालों के बढ़ते हुए चैलेंज से निपटने के लिए जनाब मोदी ने कहा कि इस मसले का हल टेक्नोलॉजी से ही निकाला जाना चाहिए। वजीर आजम ने उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के लिए आलमी मेयारात और मुश्तरका जाब्तों की ज़रूरत को उजागर किया। 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज नई दिल्ली में यशोभूमि में शुरू होगी। इसका मौजू है हदूद के बगैर पैमाइश, जिसमें शराकत दारी के एक आलमी प्लेटफॉर्म सरमायाकारी और एक दूसरे को मालूमात बहम पहुंचाने का एक आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करते हुए टेली मुवासलात, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी इख्तरा के शोबों में भारत की काबिले तहसीन तरक्की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में अगले 1 अरब डिजिटल कनेक्शन के मैदान में सरमायाकारी, कामकाज में खुद मुख्तारी और टेलीकॉम के मुस्तकबिल के बारे में CEOs की गोलमेज कॉन्फ्रेंस, भलाई के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल, साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक सरबराह मीटिंग, 6G सिंपोजियम, स्टार्टअप वर्ल्ड कप इंडिया 2026, नौजवानों को दरपेश चैलेंजों के लिए रोबोटिक्स और दीगर आलमी टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गे पामिला आज भारत मंडपम में दूसरी इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA प्रोस्पेरिटी समिट 2026 में शिरकत करेंगे। यह समिट भारत EFTA तिजारती और इक्तिसादी साझेदारी से मुतालिक माहदे की सालगिरह के तौर पर मुनाकिद की जा रही है जो गुज़श्ता बरस 1 अक्टूबर को नाफिज किया गया था। इस समिट में सरकार के आला अफसरान, सनती रहनुमा और भारत और 4 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शराकतदार शिरकत करेंगे। इस समिट का मौजू है 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी से ताल्लुक मुतालिक साझेदारी का क़याम, भारत में 10 लाख मुलाजमतों की तश्कील। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। कल बिलासपुर पहुंचकर उन्होंने एम्स बिलासपुर के पहले जलसे तकसीम असनाद में शिरकत की और तलबा को मेडल्स और डिग्रियां अता की। अपने दौरे के दूसरे दिन आज सदर जमहूरिया अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
0: हिमाचल प्रदेश के अपने 3 रोजा दौरे के दूसरे दिन आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अटल टनल रोहतांग जाएंगी। वो इस टनल के शिमाली और जनूबी पोर्टल का दौरा करेंगी और सरहदी सड़कों की तंजीम के अफसरान से इस टनल के बारे में मालूमात हासिल करेंगी। दोपहर बाद सदर मुर्मू मनाली के मशहूर हिरेम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। मनाली अटल टनल रोहतांग और आसपास के इलाकों में सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। मनाली से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा जिसके बारे में बहुत से माहिरीन को उम्मीद है कि तकरीबन 3.5 साल के बाद इस शरह में कोई इजाफा किया जाएगा क्योंकि मगरबी एशिया तनाज़े के सबब अफराते ज़र में इजाफा हो रहा है। पिछली बार रेपो शरह में फरवरी 2023 में इजाफा किया गया था। RBI ने उस वक्त इस शरह में 0.25% का इजाफा करके इसे 6.5% किया था। इसके बाद RBI ने 2023-24 में पूरे साल को इजाफा नहीं किया और 2025 में उसने रेपो शरह में कटौती करनी शुरू कर दी थी। RBI की पॉलिसी के तहत फिलहाल रेपो रेट 5.25% है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत

0: 1947 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। खुसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तذکرہ कर रहे हैं कि गोवा में सागरमाला प्रोग्राम के जरिए किस तरह इस नज़रिए को अमली शक्ल दी गई है।
1: भारत का बहरी शोबा मुल्क की तिजारत के लिए अहम तरीन रहा है। इस शोबे ने गुज़श्ता बरसों में कई गुना तरक्की की है। हुकूमत ने साल 2015 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सागरमाला प्रोग्राम का आगाज़ किया ताकि मुल्क की 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा तवील साहिल, तकरीबन 14,500 किलोमीटर जहाज़रानी की आबी गुजरगाहों और तिजारत के लिहाज से अहम बैनुल अक़वामी बहरी रास्तों से इस्तेफादा किया जा सके। वज़ीर आज़म ने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को तहरीक देने के खातिर भारत की बहरी सलाहियतों को बरूए कार लाने पर जोर दिया।
2: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
1: गोवा ऐसा शहर है जो न सिर्फ ग्रां कदर बहरी विरसे बल्कि वसी आबी गुजरगाहों का हामिल है। पाणजी से महेश चौपाड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ तूफान और तेज हवाओं के चलने की पेशगोई की है। भारत ने कल लखनऊ में खेले गए पहले T20 बैनुल अक्वामी मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम 19 ओवर्स और एक गेंद में 171 रन ही बना सकी। अब सीरीज का दूसरा मैच रांची में जुमे को खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
3: शुक्रिया गौनेन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाइव होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मरकजी काबीना में 10,000 करोड़ रुपए के MSME फंड मंजूर किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि इससे छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारों को तवील मुद्दती तरक्याती सरमाया फराहम किया जाएगा और MSME शोबे को फरोग हासिल होगा। 4 रियासतों में हुए ज़िमनी चुनाव के लिए वोटिंग पुरअमन रही, 9 अक्टूबर को नतीजे का ऐलान। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, कबायली उमूर के मरकजी वजीर जुआल ओरम ने कबायली बिरादरियों से मुतालिक आईनी हकूक और कानूनी दफात पर मबनी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हुकूमत के एक सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। मरकजी काबीना ने इस अहम कामयाबी को यादगार बनाने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। हुकूमत ने विकसित भारत जीरामजी स्कीम के तहत काबिल इजाजत 375 कामों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहले के 266 कामों में 41% तौसी की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मोबाइल मुआसलात एसोसिएशन के आलमी निज़ाम के बोर्ड अरकान के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सबकी शमूलियत वाली और लगातार तरक्की का आलाकार होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में पहले T20 बैनुल अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इस तरह उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे राग नट भैरव में गायन, कलाकार है अनीशा राय।
5: नमस्कार, मेरा नाम अनीशा रे, मैं राग नट भैरव से शुरू कर रही हूँ। धन्यवाद।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा के अंतर्गत अभी आपने सुना राग नट भैरव में गायन। कलाकार थी अनीशा रे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

हर रोज़ हर जगह हसाउण वाली है, जिस करके उस नूं हासो रस अते मजाकिया कवि वजों भी जाने जाता है। उन्हां दी कविता शैली विच एक अनोखी पेशकारी है जिस विच उत्सुकता अते ठहराव है। उन्हां दा जीवन संघर्ष भरिया देखिया जाता है जो उन्हां दी सच्ची सुची मेहनत अते लगन नूं समर्पित है। श्री अरमर मसूद जी का जन्म वंड तो पहला 8 नवंबर 1935 नूं गुजरात विखे होया। आप जी ने अपनी प्राइमरी सिक्ख्या गुजरात तो ही ग्रहण की। फिर उन्हां दे पिता श्री मुहम्मद अजीम लाहौर वस गए अते वंड तो बाद फिर अपने पैतृक शहर गुजरात आ गए। इत्थे श्री अरमर मसूद जी ने 10वीं अते 12वीं की पढ़ाई पूरी की। अरमर मसूद जी एक प्रतिभाशाली अते उच्च सोच वाले विद्यार्थी सन। आप डॉक्टर बनना चाहते सन, जिस लई उन्हां ने जमींदार मेडिकल कॉलेज विच दाखला ले लिया, पर परिवारिक परेशानियां करके उसनू पूरा नहीं कर सके। 2 साल बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई नू पूरा किया अते स्कॉलरशिप ग्रहण की। इस तों बाद उन्हां ने इस्लामिक हाई स्कूल कुंजा विच पढ़ाना शुरू कर दिता अते पर्शियन भाषा दे अध्यापक बन गए। नाल ही मास्टर दी डिग्री ओरिएंटल कॉलेज लाहौर तों ग्रहण की अते गोल्ड मैडल भी प्राप्त किया। इत्थे ही उन्हां दा उत्साह अते मन पंजाबी कविता अते शायरी वल जाग गया अते अपना जीवन कविता अते वख-वख भाषावां नूं समर्पित कर दिता। आप कई भाषावां दे कवि बन गए अते पर्शियन भाषा भी पढ़ाउंदे रहे। उर्दू अते पंजाबी दे उग्गे कवि रहे, लेकिन प्रसिद्धि उन्हां नूं पंजाबी कविता विच ही मिली। आपदी कविता शैली ने असली अते शुद्ध पंजाबी सभ्याचार दा संदेश दिता। उन्हां दीआं रचनावां इन्नीआं प्रसिद्ध हो गईआं, उह जिथे भी जांदे स्रोतियां दी इच्छा हुंदी कि उस नूं वार वार सुण, जो पंजाबी साहित दा हिस्सा बन गईआं। श्री अनवर मसूद जी ने तकरीबन 15 किताबां पंजाबी अते उर्दू विच लिखीआं। उन्हां दीआं प्रमुख किताबां विचों फारसी अदब दे चंद गोसी, गुस्सा फिर खिलने लगा, तरकीब, एक दरीचा एक चिराग, सा के तबस्सम, मैली मैली धुप अते रोज बरोज हन। इस तों अलावा कवितावां शैली दीआं रचनावां विचों प्रमुख अज की पकाइए, बनैण, दामनी, दारीदारा, दो कंजूस, किदे कोल जामा, लसी ते चाह, मेरा की कसूर, नक जे मते ते हुंदा आदि हन। उन्हां दीआं प्रसिद्ध पोएट्री किताबां विचों मेला अखियां दा, अंबरी कुटुंब कलामी, हुण की करिए अते मुझे सब कुछ याद है, जरा जरा आदि हन। उन्हां दी कविता दे अंदाज विच एक विलक्षण प्रगटावा है। उन्हां ने अपनी कविता विच घरेलू मुहावरे, सधारण गल, आम लोकां अते नैत दीआं आम कथावां नूं प्रगटाया है। मसूद जी दी कविता शैली हासरस है, जिस विच भाषा है, पुरातनता है, घरेलू है, अपना वर्ग है अते दिल नूं छूण वाला बलबला है अते हस हस के टिड्डी पीड़ा पाउण वाली शैली है। आप जी दीआं कवितावां विच सधारण तत् है, जिस विच आम सधारण शब्द वरते गए हन। सब्जियां, चाह पाणी, बसां, कपड़े अते सिलाई मशीनां दा तराना है। उन्हां दी मशहूर कविता जिन्हां विच लिखिया है कि सोची पैयां हुण की करिए, रोटी सोटी खा बैठे हाँ, लस्सी लुस्सी पी बैठे हाँ, हुक्के दा कछ ला बैठे हाँ, अंदरों बाहरों भांडे भी चमका बैठे हाँ, सोची पैयां हुण की करिए, वेख लईआं ने सब अखबारां, धुन बैठे हाँ सारे वरके, पढ़ बैठे हाँ सारे अखर, सारे हरफ सुना बैठे हाँ, सोची पैयां हुण की करिए, कैसे कैसे असले बन गए, बड़े बड़े मसले बन गए, बड़े शहर बसा बैठे हाँ, सारा चैन गवा बैठे हाँ, सोची पैयां हुण की करिए। उन्हां ने अपनी इस कविता विच सधारण घरेलू गल कीती है अते सच दा प्रगटावा कीता है, चिंता भी जाहर कीती है अते अगां वधू गल भी कीती है। उन्हां दी अगली कविता जिसका शीर्षक अज की पकाइए है, भी दर्शकों ने बहुत पसंद की सी। अज की पकाइए, दस तेरा की ख्याल है, मेरा की ख्याल, दस मेरी की मजाल है, रहमया चल अज चस के ला लीए, लभ जान जे चंगियां ते भिंडियां पका लीए, बाबा तुसी बुझियां ने दिलां दियां चोरियां, मेरा भी ख्याल सी पकाइए अज तोरियां, लूआं वाली भिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, अद्धी तिखी चूर होवे, सोहनी होवे, कूली होवे, बैच होण बकरे

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष और पिछले 12 वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी लगातार जनसेवा के लिए समर्पित रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में

तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों की भी सराहना की। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2000

0: पूर्व में शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज ऐसे मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as the head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as the Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as the Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as the Chief Minister of Gujarat. He became the Prime Minister in May 2014. To mark the occasion, Prime Minister Narendra Modi and BJP National President Nitin Naveen will address the Viksit Bharat Sankalp Sabha today. Several senior party leaders will join the program virtually from different parts of Uttar Pradesh. Vice President C.P. Radhakrishnan and Defence Minister Rajnath Singh have greeted Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years in public service. Bhutanese Prime Minister Tsering Tobgay has also lauded Prime Minister Narendra Modi's 25 years in public service, describing India's development journey under his leadership as increasingly significant, not only for India but also for its neighbours and the wider global south. The 10th edition of India Mobile Congress will begin at Yashobhoomi in New Delhi today. With the theme Scale Without Boundaries, it will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the event tomorrow. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will address the second India EFTA Prosperity Summit 2026 at Bharat Mandapam today to mark the first anniversary of the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement. The summit will bring together senior government officials, industry leaders and key stakeholders from India and the EFTA states Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein to further strengthen economic cooperation, foster business partnerships and unlock new opportunities in trade, investment

नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हूँ मैं आपकी अपनी मनपसंद, जी हाँ, आपकी मनपसंद दोस्त कहूँगी ना, क्योंकि हर बार तो आपसे मुलाकात होती है रविवार और शनिवार को, तो ढेर सारी बातें करते हैं और आपका मनपसंद कार्यक्रम। तो मैं हूँ सुषमा, क्योंकि देखिए मैं तो बोलूँगी ही, मेरे तो आप सब फेवरेट हैं और आपके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम में लग जाती चार चांद, क्योंकि आप जुड़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ और कार्यक्रम का हिस्सा बनने की आप पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि अगर आपको हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करें आपकी मेल्स को, तो आप जो आज प्रोग्राम है उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछने वाली हूँ और चाहूँगी कि उसमें आप जवाब ज़रूर दें, और जो साथी हमारे जवाब देंगे उनकी मेल्स को हम ज़रूर शामिल करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे साथी इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं अपने अपने काम में तो मशगूल हो ही गए हैं, क्योंकि सुबह के 10 बज चुके हैं, स्कूल जाने वाले स्कूल जा चुके हैं दोस्त, संडे को तो हमारी अच्छे से मुलाकात होती है सभी साथियों से, दफ्तर जाने वालों से भी और जो इधर उधर काम करते हैं उनसे भी। तो भाई, अब इस वक्त हम

उम्मीद करते हैं कि जो साथी दफ्तर में हैं वो तो इस वक्त नहीं जुड़ पा रहे हैं हमें, लेकिन जो साथी सुन रहे हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट कि ध्यान से हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़िएगा, क्योंकि आज इस वेंसडे मॉर्निंग में खूब सारी धमाल होगी, बच्चों से जुड़ी बातें भी करेंगे, लेकिन हाँ कुछ सीरियस इशू जो है उन पे भी हम चर्चा जरूर करेंगे। दोस्तों शुरुआत ऐसे ही करते हैं। एक जमाना था जब माँ बाप अनपढ़ होते थे, खेती करते थे, मजदूरी करते थे या छोटी मोटी नौकरी करते थे, लेकिन सबसे अच्छी बात कि उनके बच्चे बड़े होशियार होते थे। वो इंजीनियर बने, वकील बने, आज की समय में अच्छे कामयाब हुए हैं, लेकिन आज थोड़ा रिवर्स हो गया है ये पहलू। आज माँ बाप पढ़े लिखे हैं, पैसा है, पद है, शोहरत है और काफ़ी सारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, और वो भी क्या रील्स बनाकर, कभी डांस, ऊट पटांग हरकतें करते हुए, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए जिनका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वायरल होने के चक्कर में वो ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं जो कि बचपन में या फिर बच्चों को या किसी को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, एक आम परिवार के बच्चों और सदस्यों को। तो आजकल यही देखा जाता है कि बच्चों के हाथ में जब देखो फ़ोन, और पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि उन्हें लगता है बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए, मतलब वो व्यस्त रहे, उनके पीछे ना पड़े, तो उनके हाथ में दे देते हैं वो फ़ोन। अब इस पर थोड़ा मंथन और चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ बाप अगर अपने बच्चों को इतना सेंसिटिव बना रहे हैं, उन्हें डांट भी नहीं रहे हैं और ऊपर से फ़ोन की ऐसी लत लगा रहे हैं, घर का कोई सदस्य बच्चों को फ़ोन के लिए टोक दे तो उस पर बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, और कई ऐसी हमने हरकतें देखी कि बच्चों ने बड़े एक्सट्रीम स्टेप ले लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आज हम इसी पर जानना चाहते हैं कि आपके घरों में भी आप अपने बच्चों को उनके साथ आपको समय ना बिताना पड़े, उसके लिए आप फ़ोन की लत उन्हें लगा रहे हैं, उन्हें कार्टून्स निकाल के दिखा रहे हैं शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे बच्चों के हाथ में जब स्क्रीन आ जाती है तो उनका टाइम बढ़ जाता है और उससे उन्हें होते हैं बहुत सारे नुकसान। तो आप बताएं हमें अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस कि आप अपने घर के बच्चों को किस तरह से फ़ोन की लत से छुड़ाते हैं, या उन्हें आपने भी लत लगाई, या आपके बच्चे भी इतने ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं जब उनसे फ़ोन छीनना शुरू कर देते हैं। तो हमारी मेल आईडी है iprediodaily@gmail.com। इंतज़ार रहेगा आपके जवाबों का, और जो साथी इस कार्यक्रम में अपने जवाब देंगे उन्हें प्राथमिकता के तौर पर ज़रूर शामिल करूँगी इस प्रोग्राम में। और ये जो गीत आप सुन रहे हैं उदित नारायण की आवाज में, स्वदेश फिल्म से है ये गीत, बहुत ही खूबसूरत।

तो दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो आपके घर के ये नन्हे मुन्ने जगमगाते हुए तारे हैं, इन्हें क्यों आप पहले से ही मुरझा देना चाहते हैं? क्यों आप इन्हें चमकने नहीं देना चाहते? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है पेरेंट्स का और घर के सदस्यों का। माना कि आजकल हम सबकी सुबह चाय के कप के साथ साथ स्मार्टफोन के साथ साथ भी होती है। सुबह उठते ही हम एक दूसरे को चाहे विश ना करें, लेकिन हाँ, सबसे पहले नज़र हमारी स्मार्टफोन पर ज़रूर जाती है। तो इसका खामियाजा हम सभी भुगत भी रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे ही। हम तो आपको भी सचेत कर सकते हैं, आपके सच्चे साथी हैं, तो कोशिश करते हैं कि समय रहते आपको आगाह किया जाए। माना कि सुबह सुबह चाय की चुस्कियों और ब्रेकफास्ट के साथ साथ भी आप फोन

हाथ में लेकर देखते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, चैट करते हैं, रील्स देखते हैं और मज़ा आपको लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और कई लोग तो बड़े खुश होते हैं, अरे बच्चे के सामने फ़ोन रख दो, रील्स स्क्रॉल करते हैं, खाते हंसते हंसते खा लेते हैं। लेकिन आपको पता है कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, आप जानते होंगे। डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि जब खाना है तो टीवी भी बंद करिए, टीवी देखना देखते भी खाना नहीं खाना चाहिए, और फ़ोन ने तो सच में सबका जीना हराम कर दिया है। और दूसरी बात ये कि अगर फ़ायदा हो तो क्यों ना हर कोई भरपूर मात्रा में इसका इस्तेमाल करें, लेकिन नुकसान ज्यादा हो गए हैं। हम कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी, तो वही इसके साथ भी हो रहा है। और हम अक्सर तुलना करते हैं विदेशों के साथ, हमारी ये सुविधाएं होनी चाहिए, फलां कंट्री में ये होता है, वहां ये होता है, वो होता है, अलग अलग देशों के ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हम एक दूसरे को दे देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि जब हम उनका उदाहरण देते हैं अलग देशों का, तो वो कितना सख्त रवैया रखते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि उनके बच्चे स्मार्ट बने, उनके बच्चे इंटेलिजेंट बने, फिजिकली स्ट्रांग हो। अगर उदाहरण करें हम जैसे ऑस्ट्रेलिया का ही ले लेते हैं, सोशल मीडिया साइट्स को ही देखें अगर बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल तक के बच्चों के लिए पूरी तरह से सोशल मीडिया को बैन कर रखा है। यूरोपियन यूनियंस की यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं, 26 देश उसमें शामिल हैं, अगर उनकी बात करें तो उन जितने भी सारे उनके साथी सहयोगी देश हैं, उन्होंने भी एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है और उसके तहत 15 साल से कम के बच्चों के लिए टोटली सोशल मीडिया साइट्स बंद कर रखी है। 13 से 15 में भी उन्होंने लिमिटेशन रखी है कि अगर बच्चे को सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करना है तो वो भी अंडर सुपरविजन, कोई ना कोई बच्चे के आसपास होना चाहिए, ताकि वो कोई भी इस तरह की एडल्ट साइट ना खोल लें या कोई ऐसा कंटेंट ना देख ले जिससे उसके ऊपर कोई बुरा असर पड़े। तो आप समझे कितनी स्ट्रिक्टनेस है ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज में भी। और अब चीन की अगर हम बात करें, वो तो हमारा पड़ोसी ही देश है, तो चीन में तो देखिए 18 साल तक बच्चों के लिए वहाँ पर सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद है और उनके सिलेबस में कोडिंग पढ़ाई जाती है बच्चों को। आप सोचिए, फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और वहाँ पर माँ बाप जो हैं वो बच्चों के हाथ में उन्हें चुप कराने के लिए मोबाइल नहीं देते, बल्कि उन्हें मिसल्स देते हैं, उनसे फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, उनसे जूडो और छोटी छोटी जितनी भी एक्टिविटीज़ की क्लासेज होती हैं वो उनसे कराई जाती हैं, ताकि उनके बच्चे भविष्य के लिए स्ट्रांग बने। तो ये देखिए कितना सोच का अंतर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने साथी हमारे सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को YouTube और जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, वो इंटरटेनमेंट जिसे मानते हैं, वो आजकल आफत बन गई है, तो इससे बचा के रखे। माना दुनिया हाथों में है, लेकिन उसे कैसे चलाना है ये भी हमें ही सीखना होगा और बच्चों को सही दिशा में भी ले जाना होगा। क्योंकि बच्चों को अगर हम सही तरह से गाइड करते हैं तो बच्चे वही सीखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली पर आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम, कौन सा जी हाँ, फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है दोस्तों। ipradiodelhi@gmail.com पर आपकी मेल्स का इंतजार है।

जी हाँ, बम बम बोले मस्ती में डोले। बच्चों के बचपन में तो मस्ती होनी ही चाहिए, वैसे तो आप बड़े होके भी मस्ती कर सकते हैं, लेकिन बचपन के लिए जो बच्चा है उसकी बचपन को बचाए रखने के लिए ये मस्ती बहुत ज़रूरी है। और आज हम मोबाइल देकर उनकी इस बचपने को ही, उस मस्ती को ही मार दे रहे हैं, और इसके लिए सच में इसके लिए हम और पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं, घर के सदस्य जिम्मेदार हैं, जो अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में थमा देते हैं मोबाइल। तो भाई, मोबाइल से बनाएं दूरी और बच्चों की खिलखिलाहट, उसकी मुस्कान को हमेशा बचा कर रखें, और ये जिम्मेदारी हम सब की है। कहते ना कि आप अगर परिवार बनाते हैं तो उसको सहेजना और उसको सही दिशा में ले जाना, ये हम सबकी ही जिम्मेदारी है। यही सोचकर कि आप अपने परिवार को संभाल सकते हैं, तभी आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। अभी हमने चीन का उदाहरण दिया, ऑस्ट्रेलिया का दिया, यूरोपियन देशों के उदाहरण दिए, तो वहां पर लगकर अपने बच्चों को मजबूत बनाया जाता है, फौलादी बना रहे हैं वो अपने बच्चों को, जैसे चीन की हमने बात की। लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चे क्या बनने हैं भाई, क्या कंटेंट क्रिएटर, और पूछे ही तो किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं भाई, वो डिस्ट्रैक्शन है या एंटरटेनमेंट, कुछ भी नहीं, उसका कोई कुछ नहीं मिलता भाई, सब देखा देखी कर रहे हैं। और जहाँ पहले जैसे हमने भी अपने बचपन में बहुत मस्ती किया है, बहुत सारी गेम्स खेली, पिट्ठू गिट्ठी और क्रिकेट खेल लेते थे, फुटबॉल वॉलीबॉल, और गली का क्रिकेट तो सबको सबके लिए फेमस होता ही है, बच्चों का अट्रैक्शन भी होता ही है, और तब आवाज़ आती थी, चलो चलो भाई, आवाज़ें आती हैं एक दूसरे को, चलो क्रिकेट खेलने का टाइम हो गया, बहुत हो गया पढ़ाई पढ़ाई, अब थोड़ी देर खेल लेते हैं, और पेरेंट्स भी भेज देते थे। लेकिन अब समय पता क्या है, अगर किसी बच्चे को बोल दे दूसरा दोस्त, अरे आ जाना भाई खेल लेते हैं थोड़ा सा, गाँव में भी, ये शहरों तक की बात सीमित नहीं है, बल्कि गाँवों में भी आजकल बच्चे ऐसे ही हो गए हैं, तो वो पता है क्या बोलते हैं, अरे रुक जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं रील बना रही हूँ, तभी आती हूँ, थोड़ा डांस के स्टेप कर कर आ रही हूँ, और कहीं घूमने भी चले जाओ। सच में बच्चे तो बच्चे, बड़ों का भी यही हाल है, कहीं घूमने जाते हैं ना तो उन जगहों का, उन दृश्यों का वो मज़ा नहीं ले।

उस जगह का आनंद नहीं उठाते बल्कि रील्स बनाने में लगे रहते हैं। भाई आप आजकल तो ना सच में सबके सिर पर सवार होगी रील बनाना, सोशल मीडिया ने सबके ऊपर जादू कर दिया है। और ये सही मायने में अब सोचने का समय आ चुका है कि जहाँ पर चीन जैसे और अन्य देश भी अपने बच्चों के लिए एक सही दिशा चुन रहे हैं, मोबाइल डिटॉक्स सेंटर खोले हुए हैं, अमेरिका तक भी कई बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो बैन है और एक एज लिमिट है कि इसके बाद जो है इस एज तक बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया साइट नहीं इस्तेमाल करेंगे। और हमारे यहाँ पे भी मुझे लगता है इस तरह का कानून होना चाहिए। देखिए हाथ में पूरा वर्ल्ड है, काफ़ी सारी जानकारियां हैं, लेकिन इसके साथ साथ नुकसान ज़्यादा हैं और बच्चों को स्किल सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनका स्क्रीन टाइम कम करने की ज़रूरत है। और बच्चों को ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि रियल लाइफ में जिए ना कि रील लाइफ में जिए, और बचपन जो है वो मोबाइल से नहीं बल्कि मैदान से बनेगा। तो अपने बच्चों को बाहर निकालें घरों से, उनके साथ टाइम बिताएं, शारीरिक और सामाजिक सपने उन्हें दिखाएं, लोगों से मिलवाएं, इंटरटेनमेंट जैसे जो पब्लिक आपके सोसाइटी के गांव के जो फंक्शंस होते हैं उनमें उन्हें लेके जाएं। तो मुझे लगता है इस तरह से बच्चों का स्क्रीन टाइम कम होगा और वो भी सोशल भी होंगे, उन्हें मानसिक तनाव भी नहीं होगा। जो आजकल बच्चों को बहुत सारी हम चीज़ें सुनते हैं ना, अरे टेंशन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो वो सब भी बच्चों को फेस नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें मेल भेजा और अब अच्छा लगता है जब वो प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं। तो ऐसा ही मैं सबसे पहला जो मेल शामिल कर रही हूँ वो है सतीश अनेजा जी का। ये लिखते हैं कि सोशल मीडिया की गतिविधियों ने परिवार को दूर कर दिया है। परिवार में 5 सदस्य हैं तो सभी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, आपसी कोई बातचीत और विचार नहीं होता। बच्चों को सिर्फ समझा सकते हैं कि मोबाइल को थोड़ा कम चलाएं तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ बच्चे इसका उपयोग सही भी कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी होती है। जिस तरह से जीने के लिए सांसें ज़रूरी है, उसी तरह से सोशल मीडिया का भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। बात आपकी सही है, बस बात इतनी सी है कि कितना इस्तेमाल करना है और कहाँ करना है, कब करना है, ये समझने की। और इसके साथ साथ ही हम एक और संदेश लेंगे धर्मेंद्र छीपा जी का। इन्होंने भी लिखा कि बहुत ही अच्छा विषय है और इन्होंने लिखा कि अगर हम शुरुआत से ही बच्चों में मोबाइल चलाने की आदत न डालें तो बेहतर होगा। वैसे बच्चों में सीमित समय के लिए फ़ोन चलाने की आदत डालनी चाहिए या फिर बच्चों का ध्यान कहीं दूसरी और खेल खिलौने में भी लगानी चाहिए। अब बच्चे क्या कोई भी मोबाइल और सोशल मीडिया से अछूता नहीं है, परंतु एक सीमित समय के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते। जी हाँ, बिल्कुल सही, ज़्यादा इस्तेमाल हानिकारक होता है शरीर और मानसिक स्थिति और दिमाग पर। ज़्यादा सोशल मीडिया का दबाव एक गलत आदत होती है। और इन्होंने ये संदेश भेजा भोपालगढ़ राजस्थान से, कपिल, ईशान छीपा और पूजा परिहार के साथ।

0: और दोस्तों आपको बता दें कि सतीश अनेजा जी का संदेश हमने शामिल किया, उन्होंने चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा के साथ अपना संदेश हम तक पहुंचाया था।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।

जी हाँ, बच्चों की मस्ती पर ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है। और हमारे एक साथी हैं तुलसी मस्किन जी, बिहारी कॉलोनी शाहदरा से, दिल्ली से इन्होंने संदेश भेजा। बीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्किन और चंडीगढ़ से इन्होंने अपने साथी राहुल खुराना, रचित और केशु खुराना रिधान के साथ भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया है। ये लिखते हैं कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, ये बीमारी का घर है। मेरा दोहता है, बहुत पंगे लेता है मुझसे, मोबाइल छीनते हैं, रोता है अगर उससे मोबाइल, ये कहना चाहते हैं कि अगर उससे मोबाइल लेते हैं तो वो बहुत रोता है, सामान को इधर उधर पटकना शुरू कर देता है। क्या करें अपनी, मतलब इनका कहना हम भी परेशान है। तो इसमें तो सबसे अच्छी बात, जैसे हमने आपको बताया है कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ में उसे इन्वॉल्व करी, जो एनर्जी उसका, जो ध्यान उसका वहाँ पर जा रहा है, जो भी इस वक्त सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को जितना फिज़िकल एक्टिविटीज़ में डालेंगे, जब वो ऐसे कर रहा है तो आप उसे कुछ ऐसी गेम खिलाएं, उसे अगर क्रिकेट खेलना पसंद है वो खिला सकते हैं, कोई ऐसी गेम आप लाएं जिसमें उसे मज़ा आता है वो खिला सकते हैं, लेकिन फ़ोन को कम से कम इस्तेमाल करने दें, क्योंकि बच्चों की आंखों पर भी असर पड़ता है, स्क्रीन टाइम बढ़ता है, तो सोचने समझने की भी, बड़ों की ही भी, बच्चे तो बच्चे, बड़ों की भी सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। हम सबकी क्रिएटिविटी कम हो रही है, लोगों को लगता है कि AI झट से काम कर देती है, लेकिन आपने कभी सोचा जिस काम को हम बड़ी शिद्दत से लग लग के रिसर्च कर करके करते थे, सुविधा मिली है, झट से काम होता है, लेकिन हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है कहीं ना कहीं उस क्रिएटिविटी पर ज़रूर असर पड़ा है। और दोस्तों, जो साथी थोड़ा लेट हमारे साथ जुड़े उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपनी दोस्त सुषमा के साथ। और आज हमने पूछा कि आपके घर में अगर बच्चे हैं और उन्हें भी मोबाइल की लत लगी है तो आप उन्हें उस लत से दूर करने के लिए क्या करते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो हमने जो आपको बताए टिप्स उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अपने बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में डालिए, उन्हें कुछ क्रिएटिविटी के काम सिखाइए, ताकि आपके बच्चे जो हैं मोबाइल पर कम से कम समय बिताएं। और रही रील्स और सोशल मीडिया पर छाने की बात, वायरल होने की बात, तो इससे भी बच्चों को बचाएं, उनके दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल ना डालें। और एक और संदेश बहुत ही प्यारा सा है, इसे भी ले लेते हैं। रामेश्वर जी ने ये भेजा है, ये लिखते हैं कि इन्होंने नमस्कार भेजा, सादर प्रणाम, तो आपको भी नमस्कार। बेहद बेहद अच्छा लगता है और बेहद अच्छा इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लिखते हैं, इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है वैसे, और इन्होंने ये संदेश भेजा, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा और बाबू कठेरिया के साथ साथ अपने समस्त परिवार के साथ। और तो लेकिन कठेरिया साहब, आपने नहीं लिखा कि बच्चों को फोन की लत से कैसे छुड़ा पाएं। और एक अगला संदेश है जो देख रही हूं, इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। सुदर्शन मुखी जी हैं, इन्होंने अनीता और सिमरन मुखी के साथ संदेश भेजा, शांति नगर सोनीपत से। भारत कुमार हैं, इनका संदेश भी आया है हमारे पास, और ये लिखते हैं कि आजकल एक दूसरे के पास बैठने का रिवाज ख़त्म हो गया है, और अगर कोई बैठता भी है तो कोई ध्यान नहीं देता, ढंग से बात ही नहीं करता और बस फ़ोन पर लगे रहते हैं। ज्योति और संदीप मक्कड़, मन्नत और भरत मक्कड़ के साथ धर्मवीर के साथ इन्होंने भेजा है ये संदेश, पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर से। ऐसे ही हमारे और साथी हैं अनूप सिंह जी, इन्होंने भी ये संदेश भेजा, झालावाड़ राजस्थान से, सागर पंवार, अनूप और धीरज सिंह के साथ। एक और साथी हैं हमारे बोधराज खोरवाल जी, उनका संदेश भी आया है अपने समस्त साथियों के साथ। दंतरेगी भाटापारा से, छत्तीसगढ़ से संदेश आया, हीरामणि वर्मा, पारस मणि और पुष्पेंद्र मणि।

वर्मा नोखेलाल वर्मा का। और दोस्तों अभी भी समय है, अगर आप अपने कुछ विचार लिखकर देना चाहते हैं हमारे पास तो आप भेज सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। जाकिर हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा, साविश्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और अलीजिवा अयान मंसूरी और यश मंसूरी और नुमेर मंसूरी के साथ मुंगिशा से भेजा है इन्होंने ये संदेश। बस इन्होंने कहा कि किसी भी पसंद के गीत में हमें शामिल करें। नरेंद्र शर्मा जी का भी संदेश आया कलानौर से, किरण शर्मा और नितिन मयंक शर्मा के साथ। साथ ही साथ हरजिंदर सिंह भाटिया हैं, ये भी हमें भेज रहे हैं और ये लिखते हैं कि बच्चे मन के सच्चे सुनवा दे। इन्होंने गीत की सुनने की फरमाइश की जमशेदपुर से स्टेशन रोड से एंजल और सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया के साथ इन्होंने संदेश हम तक यहाँ पहुंचाया है। स्वर्ण सिंह जी का भी संदेश आया है लोहगढ़ ठाकुरावाला से, गुरनूर गुरलाल अविराज और राजदीप जो है इनके साथी, उनके साथ इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। बच्चों की बातें चली हैं तो अच्छे अच्छे गीत ना हो तो बात नहीं बनेगी।

जी हाँ, बच्चों को करानी चाहिए मस्ती की पाठशाला, क्योंकि बच्चे जो हैं वो धूम धड़ाम और मस्ती करते ही अच्छे लगते हैं। और दोस्तों, अब हमारे जो बहुत सारे साथी हैं उनके भी थोड़े नाराज़गी के संदेश आना शुरू हो गए हैं, तो हम किसी भी साथी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं और उनके मेल्स को भी साथ साथ में कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूर हम

मेल करें। तो ये जो मैं देख रही हूँ राजेश शर्मा है, इन्होंने ये भेजा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से अपना ये संदेश। अपने साथी राज, मीना और योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा के साथ है। और इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कुछ साथियों को शिकायत रहती है, उन्हें लगता है कि शायद हम अपने जो जान पहचान के लोगों ने शामिल करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पंकज शर्मा जी हैं, इन्होंने संदेश भेजा, ये लिखते हैं कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बच्चों का ध्यान दिया पोहन क्या है ये छोड़कर चाहिए वैसे। हाँ, ये कहते हैं कि बच्चों को अगर हम छोड़ दें उसके अलावा जो है वो बहुत अच्छा है। और मॉडल टाउन करनाल से इन्होंने अपने साथियों सुधीर, नूतन और संदीप आदि और भी इनके साथी हैं, उनके साथ इन्होंने संदेश भेजा है। नीटू मल्होत्रा जी हैं, इन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया ने सबका बेड़ा गर्क कर रखा है और हमारी तो यही तो मानना है। ये कहते हैं कि हम यही मानते हैं। और अपने साथियों के साथ इन्होंने खैल बाजार पानीपत से लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल और ननक चंद जी के साथ संदेश भेजा। पीयूष गोयल और माफ करिए पीयूष और कोयल और भाविका सिक्का के साथ भी जो रोहतक से इनके साथी हैं, उन्होंने उनका उनके साथ भी ये संदेश हम तक पहुंचाया है। निसार अली जी हैं, इन्होंने ये उत्तराखंड से भेजा है, तेलीवाड़ा से हमें ये संदेश। नौशाद जी ने आलिया और अयान के साथ, साथ ही इनके साथी हैं निसार सलमानी, उनके साथ भी ये संदेश हम तक पहुंचाया है। रविंदर मोहन दास जी ने भी किशनगंज बिहार से आशा देवी के साथ संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि किसी भी गीत में हमें शामिल करें। उत्तम कुमार सिंह जंघेल जी हैं, ये लिखते हैं कि हम भी अपने 3 साल के नाती हैं, हमारे वो भी बहुत मोबाइल देखता है, रात में 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मोबाइल चलाते थे। इसको देखकर हम 10 मिनट केवल मोबाइल देखने देते हैं, उसके बाद डरावने वाले वीडियो दिखाते हैं, वो तुरंत मोबाइल फेंक के आंख बंद करके सो जाता है। देखिए ये टेक्निक तो आपकी सही है, लेकिन कोशिश करें कि आप उन्हें डरावने वीडियो ना दिखाकर उन्हें अगर आप अच्छे से कहानियां सुनाएंगे तो बच्चे खुशी खुशी आपके कुछ शिक्षा भी लेंगे कहानियों से और खुशी खुशी सोएंगे भी, डरते हुए नहीं सोएंगे। तो आप अभी बच्चों को ना, जो आपका पोता है नाती है, उसको आप यूं डरा धमका कर वीडियो दिखाकर ना करके, बल्कि प्यार से छोटी छोटी अच्छी अच्छी कहानियां सुनवाकर, उसकी बातें सुनकर आप उसे सुलाने की कोशिश करें। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छावड़ा का भी संदेश आया। ये लिखते हैं कि आज मोबाइल फोन बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन और जानकारी का साधन बन गया है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल उनकी आदतों और दिनचर्या पर असर डाल सकते हैं। बच्चे मोबाइल में जितना समय बिताते हैं उतना ही समय खेल कूद, किताबों, परिवार और दोस्तों के साथ भी बिताना उनके लिए जरूरी है। और एक और संदेश ले लेते हैं, हमारे साथी हैं, इन्होंने भी हमें संदेश भेजा है। ये हैं गुलाबदास माणिकपुरी जी, लेवाई छत्तीसगढ़ से राजादास माणिकपुरी और रानी माणिकपुरी के साथ इन्होंने संदेश भेजा है। ये लिखते हैं कि आजकल हर घर में बच्चे मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं, जिसका उपयोग उनके लिए रत्ती भर फायदेमंद नहीं है। माता पिता अपने से दूर रहने के लिए हाथ में मोबाइल दे देते हैं और फिर बच्चा खेलने लगता है। ये बात बिल्कुल हर माता पिता के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा हमारे घर में भी होता है, लेकिन बहुत कम बच्चे हम ही बच्चे को देते हैं, कुछ नया सामान देकर उसका मन भटकाने की कोशिश करते हैं। तो यही तो हम जानना चाहते हैं कि आप भी क्या अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, और यही हम सुनना चाहते हैं कि कम से कम ऐसे लोग हों जो बच्चों के हाथ में मोबाइल दें और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वो खुद समय बिताएं। और ये कहते हैं कि हम बच्चे को मोबाइल देने की बजाय कहीं उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, आप अपने बच्चे के साथ समय बिता रहे हैं। राधेश्याम शर्मा जी ने भी संदेश भेजा, गाँव हांडी खेड़ा सिरसा से हरियाणा से, और इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा के साथ इन्होंने ये संदेश भेजा है। और ये जो आप गीत म्यूजिक सुन रहे हैं ना, कि इकबाल फिल्म से है, बहुत ही इंस्पिरेशनल गीत है, आप जरूर सुने इसको, लेकिन कुछ मेल्स भी हम शामिल करेंगे साथ में। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान और मोहिनी चौहान कल्पित हिमाक्ष का भी संदेश आया है।

मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से भी सुधाकर राजे जाधव जी ने और जगुताई प्रशांत संचित प्रथम सर्वद और हर्षिता प्रणाली देशमुख ने अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। और इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ बोधराज खोरवाल जी का भी संदेश आया है। कमला रानी गीतिका खोरवाल भानु प्रकाश के साथ उत्तम नगर दिल्ली से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। साथ ही साथ चरणदास जी का भी संदेश आया है। इन्हें प्रोग्राम पसंद आया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजू अग्रवाल और केशव प्रियांशी के साथ इन्होंने संदेश भेजा है।

दोस्तों भेरठ कैन से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का हीरो जांबाज, और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के नाम दिए जो सुनना चाहते हैं, लेकिन दिग्दर्शन और कविता गौड़ का संदेश आया है हमारे पास।

और पंकज शर्मा हैं, उनका संदेश भी आया है हमारे पास मॉडल टॉन से। इन्होंने संदेश भेजा अपने साथियों के साथ और ये अपनी फिल्म पसंद का गीत सुनना चाहते हैं।

हमारे साथी हैं बिलाई घर छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन। इन्होंने संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल क्यों नहीं देना चाहिए। ये बताते हैं कि आजकल मोबाइल बच्चों के मनोरंजन का आसान साधन बन गया है, लेकिन खेलने के लिए लगातार मोबाइल देना बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक असर डाल सकता है। जैसे कि आंखों पर असर पड़ता है, उनकी एकाग्रता प्रभावित होती है, नींद खराब हो सकती है, शारीरिक गतिविधि भी कम होती है, सामाजिक विकास उनका प्रभावित होता है और उनकी जो आदतें हैं या जो दूसरी निर्भरता है वो भी बदलती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को किताबें पढ़ना, चित्रकारी, पहेलियाँ, संगीत और मैदानों में खेलने के लिए जाना, पार्क में घुमाना, संगीत सुनाना बच्चों को वो सिखाना और परिवार के साथ मिलजुल कर और रिश्तेदारों के साथ भी मिलजुल कर रहना सिखाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें बताया है हमारे साथी रोशन देवांगन जी ने। ये संदेश भेजा बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत सारे उन्होंने टिप्स भी दिए पेरेंट्स के लिए। मोहम्मद सईद आवासी जी का संदेश आया है ऊपर कोट मोहल्ला चुखंटे बुलंदशहर से। इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, हमारे कोई साथी अगर छोटा है तो उसे ज़रूर शामिल करेंगे। सीताराम कांगड़ा जी का भी आया है संदेश एकता कॉलोनी रोहतक से। इन्होंने अपने साथियों के साथ संदेश भेजा। रेडियो लिस्नर क्लब से भी हमारे पास संदेश आया और ये लिखते हैं कि बच्चों से मोबाइल अचानक छीनने के बजाय धीरे धीरे उसकी आदत जो है वो कम करें और एक निश्चित समय तक ही बच्चों को फ़ोन

0: तो दोस्तों, नन्हे बच्चों की आंखों में सपने दीजिए, उड़ान दीजिए, उन्हें नए सपने सिखाइए, क्रिएटिविटी सिखाइए। और ये तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मैसेज आया हमारे पास मशरूर हसन और मस्कीन दादाजी का, हम ले चुके हैं। फारूक अली खान जी का, आर कुमार जो है, यानी ये है हमारे साथी वडिंग खेड़ा पंजाब से, उन्होंने भी संदेश भेजा है।
1: हर राह के वो अंत पे रसता ही पाए।
0: और इसके साथ साथ रिया चलते चलते शामिल कर रही हूँ अपने दोस्तों के और कुछ मैसेज। रियासत हुसैन, मेहर अरोड़ा और संजय ढींगिया जी का भी संदेश हम तक पहुँचा है। और अनिल मोहन जी ने भी हमें संदेश भेजा है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, उषा मोहन और टिल्लू और मधु नायक के साथ। इसके साथ साथ बसंत अकीला, भारत भूषण और दिलावर खान जी का, राजेश जैन जी का और हमारे और साथी हैं एक जिनका संदेश हम जरूर शामिल करना चाहेंगे, इंद्रजीत जी, इन्होंने भी हम तक अपना संदेश पहुंचाया है। तो दोस्तों, अब विदा हो चुका है आपसे विदा लेने का। तो जाते जाते बस यही कहूंगी कि दोस्तों, इंटरनेट और सोशल मीडिया आज की जरूरत है, लेकिन बच्चों का असली बचपन स्क्रीन के पीछे नहीं, बल्कि मैदान की ताज़ी हवा और अपनों के साथ मीठी मीठी बातों में है। तो अपनी दोस्त सुषमा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार, और यही संकल्प आप लीजिए कि डिजिटल दुनिया की चमक दमक से बच्चों को असली दुनिया की चमक ज़्यादा दिखाएंगे। नमस्कार, जल्दी ही मिलूंगी अगले प्रोग्राम में। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संकेत, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर वे नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: और फिर मैंने जो सीखा, वो अनुभव आज तक काम आ रहा है। साथियों, वर्ष 2014 में देश ने मेरे दायित्व का विस्तार किया। प्रधान सेवक के रूप में सेवा का दायरा बढ़ा दिया, और तब भी देश के सामने विकराल चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं नजर आती थी। देश का हर नागरिक नया रास्ता खोज रहा था। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया कहने लगी थी, इट्स अ गॉन केस। सब ग्रोथ कहीं दिखती नहीं थी, महंगाई आसमान छू रही थी।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 2001 में इसी दिन श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग टोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री टोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री

नौवां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष का विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि कश्मीरी गेट और उसके आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के दक्षिणी तट के पास एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है। इस हमले से टैंकर पर सवार 23 भारतीय चालक दल के सदस्यों की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं सबरस, और सबरस में अभी आपने सुना लालित्य मोहनशाह के स्वर में ये गीत। और अब आप सुनेंगे एक सूफी कलाम अब्दुल हामिद सावरी के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे अमीर खुसरो की रचना और स्वर अब्दुल हामिद अंसारी जी का। और अब आप सुनेंगे अभिजीत सावंत के स्वर में अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे सबरस। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दिव्यांशु श्रीवास्तव का राग वसंत मुखारी में संतूर।

0: सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना दिव्यांश श्रीवास्तव का राग बसंत मुखारी में संतूर वादन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों के कार्यान्वयन, निर्णय लेने में दृढ़ता, पारदर्शिता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत

0: खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जलंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 72,906 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that the trust of the people and the dedication of millions of party workers have been his greatest sources of strength. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that the people's trust accumulated over 25 years and the experience gained during this period are a great asset. The Prime Minister also said that this is the time to set big targets for Bharat. Attributing his entire political journey to the unwavering faith and support of the citizens, Mr. Modi said that the present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
1: Prime Minister Modi said that India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. After nearly 3.5 years, the Reserve Bank of India today raised key benchmark repo rate by 25 basis points to 5.5% in a bid to tame rising inflation amidst global uncertainties. Announcing the bi-monthly monetary policy, RBI Governor Sanjay Malhotra said, the Monetary Policy Committee, MPC, unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points.
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%. The MPC also decided to change the stance to calibrated tightening by a majority of 4-2.
1: The last repo rate hike was in February 2023 by 25 basis points to 6.5%. The rates were unchanged through 2023-24 before beginning its rate cut cycle in 2025. Meanwhile, retail inflation rose to 4.82% in August as compared to 4.45% in the previous month. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's partnership with Africa is being built not just for today, but for generations to come. Addressing a gathering at the Foreign Service Institute of Ghana in Accra, he said diplomacy must manage competition without allowing it to turn into confrontation and promote cooperation despite differences in interests. Dr. Jaishankar highlighted India's progress in the economy, infrastructure, digital technology and manufacturing. He stressed the need for India and Africa to turn their young populations into skilled and empowered citizens. India has rejected the Organization of Islamic Cooperation's OIC's remarks on Jammu and Kashmir and India's actions against terror infrastructure in Pakistan. Speaking

हर आंगन। स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे घर आंगन कार्यक्रम में। बातों मुलाकातों के इस सफर में मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। तो पहले वो बात जो है कार्यक्रम की शुभ शुरुआत, आज का सुविचार। श्रेष्ठ कर्म ही भविष्य की सबसे अच्छी तैयारी है, ये है हमारा आज का सुविचार। दोस्तों, वर्तमान समय हमारे हाथ में होता है, हम क्या सोचते हैं, कैसे प्रयास करते हैं, सब कुछ हमारे आज के प्रयास से तय होता है दोस्तों। इसलिए भविष्य की चिंता में समय गंवाने की बजाय समय का सदुपयोग करना और सही दिशा में कदम उठाना ही हमारे आने वाले कल को सुरक्षित और सुंदर बनाता है। इसलिए वर्तमान में किया गया श्रेष्ठ काम ही भविष्य की मजबूती का सामान तैयार करता है। और हमारा आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य है, ये हम जानते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करना, सही दिशा में कदम उठाना और आने वाले कल को सुरक्षित और सुंदर बनाने का तरीका इसके अलावा और कोई सा है नहीं। तो FM गोल्ड सुनने की इस अच्छी आदत को आप बरकरार रखें हमारे साथ, यानी 100.1 MHz पर आपके लिए जानकारी और मनोरंजन का ये सफर जारी रहेगा। इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म AIR लाइव न्यूज 24/7 पे भी जुड़ सकते हैं आप। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको आज का सवाल। आज आपको बताना है स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि उस आदत से हम ही नहीं बल्कि हमारे आसपास भी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाते हैं? सोचिए और लिख भेजिए अपने जज्बात fmgoldga@gmail.com पे। आपके जवाबों का सिलसिला शुरू हो उसके पहले हम सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को।

वक्त फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे इस खूबसूरत से गीत को। और साथियों, निगाहों की चमक आपकी बरकरार रखते हुए अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले सफर की तरफ। और आज इतिहास के पन्नों में हम लेकर आए हैं दो ऐसी हस्तियों की कहानी जिनकी आज जयंती है। अपनी ताकत और आवाज़ से आज़ादी की लौ को जलाए रखने वाली उनमें से एक हैं महान स्वतंत्रता सेनानी और वीरांगना दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी हम जानते हैं। भगत सिंह को लाहौर से सुरक्षित बाहर निकालने और क्रांतिकारियों के लिए हथियार लाने ले जाने का साहसिक काम करने वाली इस वीरांगना को उनके जयंती पर शत शत नमन करते हैं। और दूसरी हैं मल्लिका ए गजल बेगम।

अख्तर साहिबा जी, जिनकी जादुई आवाज संगीत जगत के चाहने वालों को ही नहीं बल्कि आजादी के दीवानों को भी अपनी ओर खींचती थी, और विदेशी हुकूमत के खिलाफ अपनी गायकी को हथियार बनाना बेगम अख्तर साहिबा का अंदाज था। गजल, ठुमरी, दादरा और शास्त्रीय संगीत के जरिए अपने सुरों को अभिव्यक्त करने वाली बेगम अख्तर की गजल गायकी ने उन्हें मल्लिका ए गजल बनाया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। उनकी जयंती पर हम उन्हें भी नमन करते हैं। और फिर से आपको याद दिला देते हैं दोस्तों, आज का सवाल, जिसमें आपको बताना है आज कि स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की हमें जरूरत है, आपको क्या लगता है। और लिख भेजिए हमें अपने विचार, अपनी बात, fmgoldga@gmail.com पर।

तेरे मेरे सपने। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आपने इस खूबसूरत से गीत को सुना। दोस्तों, सौंदर्य को चार चांद स्वर्ण आभूषण लगाते हैं और शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में परिधान अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं, खासकर आरामदायक परिधान। और कपड़ों को आरामदायक बनाने में जिस प्राकृतिक स्रोत का योगदान सबसे ज्यादा है वो है सफेद सोना, यानी कि कपास। और जानते हैं आज इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज है विश्व कपास दिवस। साल 2019 में विश्व व्यापार संगठन ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों, और 2021 से इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाया जाने लगा। और चूंकि हम दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से एक हैं और कृषि प्रधान हमारे देश में बहुत से किसान कपास की इस प्राकृतिक खेती से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं, इसलिए आज का दिन हम इस सफेद सोने को समर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद कपास से बने सूती कपड़े हल्के होते हैं, उसी के साथ साथ वो हमारी त्वचा के तापमान को भी नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं। इसके जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो त्वचा के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए नवजात शिशुओं को सूती के कपड़े पहनाए जाते हैं, है ना? याद कीजिए, हम सब ऐसा ही करते हैं ना। और न सिर्फ कपड़े बल्कि रुई, बैंडेज, पशुओं का चारा, तेल, गद्दे, कुशन, अखबार, कागज और यहाँ तक कि हमारी नोट, सब कुछ कपास से ही तो बनता है ना? तो प्लास्टिक और सिंथेटिक के इस दौर में पर्यावरण अनुकूल कपास के प्राकृतिक रेशे और उसके फायदों के लिए जागरूक करना ही आज के दिन का उद्देश्य है और यही हम कर रहे हैं। तो आइए प्रकृति के इस अनूठे उपहार को हम ज्यादा से ज्यादा अपनाएं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए आगे बढ़ाएं।

साथियों, इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे थे आनंद महन फिल्म से, और गायक थे यशुदास। और साथियों, अब हम बात करते हैं अपने आज के प्रश्न में आए हुए उन हमारे साथियों के बारे में जिन्होंने अपने संदेश लिख भेजे हैं हमें। और आपको याद दिला दें, हमारा प्रश्न है कि स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की ज़रूरत है। और इस बारे में हमारे जो श्रोता साथी हैं जिन्होंने अपने संदेश हमें लिख भेजे हैं, उनमें हमारे पहले श्रोता साथी हैं नवीन भाटिया जी, और उन्होंने अपना विचार लिखा है कि भाई, रोड पे कचरा ना फेंकने के लिए डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए और यही बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारा अगला जो संदेश है वो है चरणदास जी का। उन्होंने कहा है कि ये काम सचमुच में बहुत अच्छा है, और ये जागृति के लिए आप लोगों को हम धन्यवाद कहते हैं कि आप इस तरीके के विषयों को सामने लाते हैं, FM गोल्ड की तारीफ कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और सफाई के साथ साथ हमें आसपास के वातावरण को भी विशेष रूप से साफ रखना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपके इन विचारों के साथ आपने ये भी बोला है कि 30 साल से अपने घर घर के बाहर चौक में आधा घंटा रोजाना वो सफाई करते हैं, और ऐसा करके वो आसपास की गंदगी को जहाँ भी दिखती है उसे दूर करते हैं। और देखिए कितना सुंदर भाव है इनका। बहुत शुक्रिया। इस तरीके से अगर हर नागरिक सोचने लगे तो आसपास स्वच्छता ही स्वच्छता दिखने लगे, है ना। और अब हम बात कर लेते हैं अपनी उस बात के बारे में जो है एक विशेष प्रेरणा भरी कहानी। साथियों, प्रेम के कितने ही रूप हमारी धरती को संवारते आए हैं, वैसे ही वात्सल्य से भरे प्रेम की एक कहानी आज मैं आपको बता रही हूँ। वो है ओडिशा प्रांत की समाज सेविका आभा रानी चौधरी की। उनके वात्सल्य प्रेम की कहानी शुरू हुई 2003 में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जब वो ओडिशा के झाड़पारा जेल के कैदियों से मिलने गए तो वहां उन्होंने देखा उनके साथ उनके मासूम बच्चे बैठे हुए हैं जो बिना किसी कसूर के जेल की चार दीवारी में रहने को मजबूर हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि बिना किसी जुर्म के इन बच्चों का बचपन जेल की इन चार दीवारी के बीच दम तोड़ रहा है, और इसी घटना ने उनके मन में बच्चों के प्रति असीम वात्सल्य को भरा। उन्होंने भुवनेश्वर में मधुरमय आदर्श शिक्षा निकेतन की शुरुआत की और उन बच्चों को और ऐसे ही तमाम बच्चों को सहारा देने का काम शुरू किया। उनके लिए एक अच्छा घर, उनके लिए बेहतर संस्कार और अच्छी शिक्षा, और साथ ही साथ माँ का प्यार दुलार, ये सब कुछ देने का प्रयास वो कर रही हैं। पिछले 23 सालों में 200 से ज्यादा कैदियों के बच्चों को आभा रानी ने पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा करने का काम किया है, और मातृत्व से भरी उनकी मातृमयी सोच ने सलाखों के पीछे सिसकते बचपन को एक नया सवेरा दिया है। क्योंकि सच ही कहा है किसी ने ना, कि हो सके तो किसी का सहारा बनो और डूबती हों कश्तियां तो किनारा बनो। तो चलिए, खूबसूरत संगीत हम सुनते हैं।

रहे थे इस फिल्म में और इस प्यारे से गीत में। साथियों, हम जो भारतीय हैं वो संस्कृति के साथ जीवन को जीते हैं और इसीलिए हर मौसम में हमारे यहाँ त्योहार और पर्वों की झलक और उनके पीछे गहरे जीवन दर्शन का संदेश हम देखते हैं, है ना। और यही जीवन मूल्य जो हैं वो हमें संस्कारों से बांधते हैं। जैसे इन दिनों हमारे पूर्वजों और पितरों के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का अवसर ये श्राद्ध का समय चल रहा है, जिसे हम पितृ पक्ष भी मानते हैं। पूर्वजों द्वारा मिले जीवन संस्कारों और उनके उपकारों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए इन दिनों हम ये दिन मना रहे हैं, यानी कि पितृ पक्ष मना रहे हैं। श्राद्ध का मतलब ये होता है दोस्तों कि श्रद्धा से किया जाने वाला पावन कर्म। और हम जानते हैं ना कि जीवन चक्र जो है वो जीवन के नियम से जुड़ा है, और ये जो समय है श्राद्ध का वो हमें पूरी तरह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव सिखलाता है। और तभी तो इन दिनों हम अपने पूर्वजों को अर्पण और तर्पण करने के बाद ही अपने लिए कुछ सोचते हैं। अर्पण तर्पण का अंश जो हम अपने पितरों के लिए निकालते हैं वो पशु पक्षी और जीवों को अर्पित करते हैं, ताकि उनकी तृप्ति के द्वारा हमारे पूर्वज संतुष्ट हो सकें और हमें अपना आशीष दें। भागती दौड़ती जिंदगी में भाई हमारे पर्व हमें कुछ पल रुककर जीवन को समझने और संवारने का अवसर देते हैं। इसीलिए अर्पण तर्पण के संस्कारों को बांधने वाला जो श्राद्ध पक्ष है वो अपने पूर्वजों की याद में और सभी जीवों के प्रति श्रद्धा और उनकी तृप्ति की बात में हमें जीवन का गुर भी सिखलाता है।

काजल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस खूबसूरत से गीत को। और साथियों, हमारा आज का सवाल, जिसके लिए बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं, और वो सवाल है, स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की ज़रूरत आपको लगती है, जिसे आपने अपनाया है और आपको लगता है कि दूसरे भी इससे प्रेरित हों। और इसके लिए संदेश हमारे पास है गौरी शंकर वर्मा जी का, जिन्होंने लिखा है कि भाई, सफाई की शुरुआत घर से होती है। अगर हम खुद घर में सफाई रखेंगे तो इसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा, और घर और बाहर दोनों का ध्यान अगर हम रखेंगे सफाई के लिए तो ये हमारी आदत बन जाएगी, और स्वच्छता शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये बहुत सुंदर सी बात इन्होंने लिखी है, गौरी शंकर जी ने, नांगलोई से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आपके इस इतने बेहतरीन संदेश को भेजने के लिए। और वैसे ही हमारे पास है संदेश अफरोज शेख का, जो सुपौल बिहार से लिखते हैं। अगर आप बाहर कुछ भी खा पी रहे हैं तो जो बोतल है या जो थैलियाँ होती हैं वो आप अपने बैग में डाल लें या फिर पॉकेट में डाल लें। हम सब की यही आदत अगर है तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, ऐसा वो करते हैं। भाई कितनी सुंदर बात है ना, और जागरूकता की भी बात है कि अगर हम ये सब करें तो अपने आसपास के वातावरण को भी साफ और सुंदर बना सकते हैं। उसी तरह हमारे पास एक संदेश है मंटू शर्मा जी का, और इन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल जाता था तब सबसे पहले मैं मेरी क्लास की पूरी सफाई करके ही पढ़ाई शुरू करने की आदत थी उस समय सभी की। तो ये कितनी अच्छी बात है, एक एक किताब को हम प्लास्टिक कागज से, डिजाइन पेपर से ढक के रखते थे ताकि बारिश में वो भीगे ना, फटे ना, और इस तरह हम अपनी कॉपी और किताबों को भी स्वच्छता के साथ जोड़ के रखते थे। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है, और इन्होंने लिख भेजा है हनुमानगढ़ राजस्थान से अपना ये संदेश। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने कहा है, स्वच्छता सोच की आदत बनाओ और सब कुछ स्वच्छता रहे ऐसा गाओ। तो क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे बनते हैं, और बिजली, पानी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे बहुत सारी सोच समझ कर हमें इन्हें उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे आसपास कोई भी गंदगी ना फैले, और कूड़ा कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डाला जाए। ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं जिससे हमारा जीवन सुंदर और साफ हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इसी तरह जीवन के साथ जुड़ी हुई जो स्किल है उसकी बात अब हम अपने अगले सेगमेंट में आपको बता रहे हैं। क्योंकि सूचना और तकनीक के इस युग में जब हम एआई की बात करते हैं तो कंप्यूटर का ज्ञान तो मानिए जैसे अनिवार्य ही है ना। फिर चाहे वो छात्र हों या अभिभावक, सभी के लिए तकनीक जो है वो ज़रूरी है। स्कूल के प्रोजेक्ट्स, ऑफिस के काम, सरकारी दस्तावेज, आवेदन करना हो कहीं पर, या ऑनलाइन पेमेंट करना हो, डिजिटल शॉपिंग, छोटी बड़ी हर बात में डिजिटल स्किल शामिल है। लेकिन सिर्फ मोबाइल के प्रयोग से ही इसमें महारत नहीं मिल सकती, इसलिए इसके लिए कौशल के लिए शैक्षणिक योग्यता का अगर हम उपयोग करें, जिसके लिए अलग अलग कोर्स हमारी सरकार करा भी रही है, और उसी के साथ साथ कंप्यूटर को चलाना हम सीखते जाते हैं जो हमारी कमाई का भी रास्ता बनता है। तो चाहे कोई किसान हो या कोई दुकानदार या कोई छात्र हो या गृहिणियाँ, डिजिटल कौशल से दुनिया के किसी भी कोने से कमाई करके सभी स्वावलंबी बन रहे हैं, है ना। तो अपने ही फ़ोन से ऑनलाइन फॉर्म भरना, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना, अपनी फसल और प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म में बेचना, और बैंकिंग को सुरक्षित रूप से यूपीआई में चलाना, वो भी बिना कहीं गए। तो डिजिटल स्किल, डिजिटल इंडिया जैसे अभियान का हिस्सा बनने वाला हर व्यक्ति जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रहा है। तो कहीं भी किसी भी बंधन से मुक्त होकर आप अपने इस कौशल के साथ आत्मनिर्भरता के डग भरिए, हम यही चाहते हैं।

साथियों, दिल्ली और एनसीआर की लाइफ लाइन बनी मेट्रो का सफ़र हम में से कई लोग रोज़ करते होंगे, है ना? क्योंकि दिल्ली मेट्रो आपकी अपनी ग्राहक सेवा और विशाल नेटवर्क के लिए हम सब के लिए बहुत ज़्यादा विश्वसनीय बन चुकी है। हम में से अधिकांश लोग समय की बचत, किफ़ायती कीमत और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते ही हैं। इसलिए दिल्ली मेट्रो के हर अपडेट के बारे में जानकारी हमारे सफ़र को और आसान बनाती है। इसीलिए आज हम बात करते हैं AI चैटबॉट वर्चुअल सारथी ऐप के बारे में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इस ऐप ने दिल्ली की रफ्तार में डिजिटल सुविधा को नई उड़ान दी है और इस डिजिटल साथी ने इसके साथ QR टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई है, वर्चुअल स्मार्ट कार्ड की सुविधा दी है, यात्रा संबंधी सभी जानकारी, मेट्रो स्टेशन की जानकारी, यहाँ तक कि स्टेशन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता जैसी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के बारे में भी, यानी यात्रा की प्लानिंग से लेकर मंजिल तक हर बात की जानकारी हमें मिलती है सारथी ऐप के जरिए। अगर आपने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है ना, तो अब चूकिएगा मत। बस इस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में खोलिए और अपनी आवाज़ में या फिर टाइप करके अपने गंतव्य संबंधित प्रश्न को आप पूछ सकते हैं यहाँ। जैसे सबसे छोटा रूट कौन सा है, आपके गंतव्य का किराया कितना होगा, आपका स्मार्ट कार्ड कैसे होगा रिचार्ज, यहाँ तक कि आपके नज़दीकी स्टेशन के आसपास घूमने या दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी

ये सारथी ऐप आपको दिलाता है। तो डिजिटल होता इंडिया और स्मार्ट बनती दिल्ली में आसान और सुगम सफर जब भी हो करना, हमारी बताई इस जानकारी को अमल में लेकर लुत्फ उठा सकते हैं आप।

लता मंगेशकर की आवाज़ में चोर पुलिस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे दोस्तों। और अपने आसपास की चीज़ों को हम आपको अगर बांटने की बात बताएं तो कैसा रहेगा? जैसे हम अगर आपसे कहें पैसा आप देते हैं तो आपका वॉलेट खाली हो जाता है, और अगर कोई चीज़ किसी को देते हैं तो सामान कम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो ऐसे गणित से बिल्कुल दूर है, और जानते हैं वो क्या है? वो है हमारी खुशी। वो कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो इस सुंदर भाव से अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को देते हैं तो उस देने के भाव में छिपा जो सुख है वही सच्चा सुख है। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों से खुशियों को समेटने की आदत हमें आनी चाहिए। किसी की तारीफ करना, किसी का हौसला बढ़ाना और किसी को देखकर प्यारी सी मुस्कान दे देना, बस इससे पूरा दिन बन जाता है। तो इस खूबसूरत सी बात के साथ हम आज अपने कार्यक्रम में आपके लिए ये अंतिम गीत ऐसा ही कुछ आपको सुना रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुँचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। श्री शाह ने सभी से इस यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना आवश्यक है। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने

लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद आज प्रमुख नीतिगत रेपो दर में

0: From Gujarat's agrarian transformation to a broader transformation of Indian agriculture shows how better irrigation, reliable power, rural roads, technology and market access helped farmers increase productivity and income. And benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% lower during the afternoon session today. Sensex slipped 241 points to 72,827, while Nifty lost 117 points to 22,659 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 के लोहर्ट्ज, DRM 810 के लोहर्ट्ज पर. और अब समय हुआ है अगले कार्यक्रम यानी कि आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से. लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं ये संदेश.
2: दस लाख की लॉटरी मुझे.
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान.
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपकी होस्ट और आपकी दोस्त रैना तंवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार. जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से. कार्यक्रम का जो आज हम लेकर आए हैं, जो फिल्म लेकर आए हैं, वो है 1980 के दशक की वो फिल्म जिसमें एक ऐसे डांस फॉर्म को जन्म दिया था जो अपने आप में एक मिसाल बन गई. दूसरी तरफ मिथुन दा का डांस मूव्स और ऊपर से बप्पी दा का संगीत, बस ये तीनों का जो मेल है ना, उसने एक अलग ही हिस्ट्री बना दी. जी हाँ, अरे अरे, लगता है मैं नाम बता दूंगी इस जल्दी जल्दी में. बिल्कुल नहीं, क्योंकि रहना है तो कुछ तो आपको कहना है. जी हाँ, चलिए श्रोताओं जल्दी से फोन उठाएं और हमें बताएं कि आज हम किस फिल्म को लेकर आए हैं, किस फिल्म की कहानी, किस फिल्म के रोचक किस्से और गीतों को आपके सामने पेश करेंगे. तो जो हमें सबसे पहले सही जवाब के साथ मैसेज करेगा वो होगा हमारे आज का फेवरेट श्रोता. जी तो चलिए इस फिल्म से जुड़े सुनते हैं ये वाला गीत. और मुझे पता है कि हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं और मेरे जो मैंने जो गेस करने का दिया है ना आपको, तुरंत आप जवाब देंगे. तो इंतज़ार रहेगा आपके जवाबों का और आप हमें मेल करेंगे ipradiodelhi@gmail.com. जी हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com. तो जल्दी से हमें मैसेज कीजिए और फेवरेट श्रोता बन जाइए.

जी हाँ, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, यानी कि आपको भी हमारी याद आ रही है और हमें भी आपकी आ रही है, तो क्या बात है। सबसे पहले जो मैसेज किया है वो है डोल राणा जी ने। जी हाँ, डीबी राणा जी, नेहरू विहार दिल्ली से आप हमारे आज के फेवरेट श्रोता घोषित हो चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे हमारे फेवरेट श्रोता सभी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ये गेम होना बहुत ज़रूरी है, इससे कनेक्शन हमारा आपका जुड़ता है। जी हाँ, तो आज हम लेकर आए हैं 1982 की रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर। तो ये है कहानी एक ऐसे लड़के यानी कि अनिल की, जिसके पास दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, मगर उसके पास है एक सपना। जी, और इसके निर्देशक जो थे वो हैं बब्बर सुभाष जी, और डिस्को संगीत दिया है बचबीर लहरी जी ने, और मुख्य भूमिका जो निभाई थी जिम्मी जी, अनिल के किरदार निभाया मिथुन चक्रवर्ती साहब ने। कहानी शुरू होती है उसकी माँ के संघर्ष से। एक अमीर अहंकारी व्यक्ति शर्मा उनकी माँ पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा देता है। अनिल का बचपन गरीबी में दर्द में बीता, बड़ा होने पर एक स्ट्रीट परफॉर्मर बनता है। एक दिन एक प्रसिद्ध संगीतकार प्रबंधक डेविड ब्राउन उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उसे एक नया नाम जिमी देते हैं। जिमी अपनी मेहनत और शानदार डांस के दम पर फर्श से अर्श तक पहुंचता है कुछ इस तरह।

तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ गाओ। जी हाँ, रेडियो जिसने अभी अभी ऑन किया है, हम बता दें कि आप वैसे तो रेडियो ऑन करके ही पता चल गया होगा आपको कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं आज। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं डिस्को डांसर फिल्म। जी, और यह कहानी को जब हम किसी जिमी एक शानदार स्टार बन जाते हैं, और कहते हैं ना कि कभी कोई रास्ता आसान नहीं होता, कहानी में मोड़ तब आता है जब इस फिल्म का खलनायक जिमी को के रास्ते के से ना हटाने की कोशिश करता है और उनके गानों में मुश्किलें पैदा करता है। उसकी माँ की दुखद मृत्यु भी हो जाती है। अंत में जिमी अपने गानों और डांस के जरिए खलनायक के सारे षड्यंत्रों को बेनकाब करता है और आखिर में जीत सच की ही होती है। और अब हम सुनते हैं दुनिया भर में धूम मचाने वाला उषा उत्थप और बप्पी दा का ये संगीत गीत, खूबसूरत सा। और हमारे जो श्रोता हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं, जो हमें भेज रहे हैं मैसेज। सुन, जिन्होंने अनीता जी हमें मैसेज कर रही हैं कि आपका कार्यक्रम सुनती हैं और अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मसूर हसन जी ने हमें मैसेज किया है, और इसी तरह से सुदर्शन शाह, स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज, भरत कुमार, ज्योति, मक्कड़, मन्नत, भरत, पिंगा वाला चौक, इन्होंने जलंधर से हमें संदीप जी ने किया है हमें मैसेज, और पूनम गंगेजा जी ने हमें मैसेज किया है, निमित, और इसी तरीके से हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शन गौर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, कविता गौर का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। आप सुनते हैं ये अगला नगमा।

जी हाँ, ये कितना खूबसूरत सा सॉन्ग आपने सुना उषा उत्तम और बप्पी की आवाज़ का। और इसी तरह से इसमें बहुत सारे गीत हैं जो कि मन करता ही सुनते रहे ना। और अगला जो गीत मैं लेकर आ रही हूँ वो है पार्वती खान जी ने गाया है, और ये गीत अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पॉपुलर हुआ। कहा जाता है कि रूस में मिथुन चक्रवर्ती और उनके गाने इतने लोकप्रिय हुए कि एक समय रूस को के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी अपनी रैली भी रद्द करनी पड़ी। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। सोवियत रूस में फिल्म में 90 और यानी कि 94 करोड़ की कमाई करी, और वहां पे कम से कम 12 करोड़ के टिकट बिके। लगभग 2 करोड़ से 50 लाख के बजट में बनी ये फिल्म वैश्विक स्तर पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया। सोवियत संघ में जबरदस्त सफलता और मिथुन दा की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उनको इस किरदार जिमी के नाम से ही पहचाना जाने लगा। कहते हैं ना, कोई भी भारतीय रूस वहां जाता और रूस में जैसे ही जाता तो स्थानीय लोग जो गाना गाते वो ये गाते। क्या गाते? सुनते हैं।

यस जिमी जिमी, कितना मस्त ये जो गीत था और सब जगह किस तरीके से पॉपुलर हुआ वो सभी जानते हैं। और हम इस फिल्म के बात कर रहे थे, इस फिल्म के निर्देशक जो निर्माता है बब्बर सुभाष, संगीतकार बप्पी लहरी, गीतकार अनजान और फारूक कैसर, और लेखक थे डॉक्टर राही मासूर रजा और दीपक बलराज विज जी, और प्लेबैक सिंगर आप जानते हैं विजय वेडकर और बहुत सारे, पार्वती खान, बप्पी दा, उषा उत्थप और किशोर दा। तो इन सभी ने अपनी आवाज़ दी और इस फिल्म को बनाया एक लोकप्रिय इतिहास रचने वाली फिल्म। कहते हैं, कहा जाता है कि फिल्म के निर्देशक ने माता बप्पर जो सुभाष जी थे वो बप्पी दा के घर पहुंचे और संगीत के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। खिड़की के बाहर देखते उन्हें अचानक उनके मन में ख्याल आया कि डिस्को डांसर, बस यही तो जन्म, यही से जन्मा उनका दिमाग में ये नाम कि डिस्को डांसर। और ये देखो कितने पॉपुलर हो गए और हमें बहुत सारे मैसेज आए हैं, जबकि मेहर अरोरा जी का मैसेज आया है, राजकुमार दूधी जी का, हमें राजकुमार प्रमोद कुमार जी का मैसेज आया फरासी जलगांव से, भारत कुमार का, ज्योति मन्नत मकड़ कमल पिंगा वाला चौक से, उन्होंने जलंधर से किया, सुरेश दावर जादवर का भी हमें मैसेज आया है, जादव जी का, और धर्मेंद्र छिप्पा जी का, कपिल ईशान, पूजा परिहार, और पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, सीता, गीता, और इसी तरह से हमें आर कुमार जी का, पिंकी लवली, आरती, मिंटू और पंजाब से कर रहे हैं, और फिर इसी तरह से हमें जामुन देवी साहू, बबलू साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत बेबी, आराध्या हमें छत्तीसगढ़ से मैसेज कर रहे हैं, सदानंद और सदानंद जी हमें कर रहे हैं, सुशीला देवी कर रही हैं, कुमार गौरव जी कर रहे हैं हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तुलसी मस्कीन जी ने किया है हमें मैसेज और बहुत बहुत शुक्रिया शादरा से। फारूक अली खान जी ने हमें मैसेज किया है, मस्कीन दादाजी ने मैसेज किया है, उन्हें ये सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से हमें मैसेज कर रहे हैं मुंडा टोला छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेतान और गंगदेश्वरी नेताम जी ने, और उन्हें इसी तरीके से बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय ढिंगिया जी का हमें मैसेज आया, सुवर्ण सिंह जी का, हिरमानी वर्मा, कमलकांत गुप्ता, धर्मेंद्र छिप्पा जी का मैसेज आया है, और इसी तरीके से संजय ढिंगिया जी का भी मैसेज आया है, पीएस नावस्कर जी का भी मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से पार कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा और ये सुनते हैं अगला नगमा।

0: तेरे लिए।
1: इशक मोहम्मद जी का मैसेज भी हमारे पास आया है और पीएस नावस्कर का रोजी डे कास्ट्रो का मैसेज आया है। सुदर्शन मुखी, धर्मेंद्र जी, तुलसी जी, पीएस नावस्कर, मेहर अरोरा जी और स्वर्ण सिंह, संजय ढींगिया, अनीता जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब दोस्तों समय को इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं आपसे कुछ और देर जोड़ पाऊँ, तो यानी कि रैना दवर को दीजिए एक ही फिल्म कार्यक्रम से इजाज़त। फिर मिलेंगे नए किस्से, नई कहानी, नए गीतों के साथ, और मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट, आपके दिल को दे सुकून, एक ऐसा काम जरूर। एक नेक नागरिक बने, दूसरों को माफ करने का दिल रखें और अच्छे नागरिक बनते हुए आगे बढ़ें, और सुनते रहें आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त। और अगला जो कार्यक्रम है 2:30 बजे आप जुड़ेंगे अंजू जी से, और उसी उन्हीं के साथ 3 बजे भी आप सुनेंगे मैटिनी मेलोडी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद

0: 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
1: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर

0: को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
2: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझ कर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
1: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
4: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
3: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
5: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
3: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
0: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम, नाम है जिसका एक ही कलाकार। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं एक संदेश।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आप सभी का इस प्रोग्राम में दिल से स्वागत करती हूँ। और आज एक ऐसे सितारे को लेकर आई हूँ जिसके गीत संगीत ने आज भी अपनी एक अलग ही खास जगह बना रखी है। कहते हैं ना कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती और सुरों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कभी कभी इन्हीं सुरों के बीच कोई ऐसी आवाज जन्म लेती है जो सिर्फ संगीत नहीं रचती बल्कि अपने समय की सोच को भी चुनौती देती है। तो आज की हमारी जो सितारा है वो एक ऐसी महिला है जिसने उस दौर में हिंदी सिनेमा संगीत की दुनिया में कदम रखा जब संगीत निर्देशन लगभग पूरी तरह पुरुषों के हाथ में था। तो क्या नाम है उनका? वैसे आपको बता दें कि आज यानी कि 7 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भी है। फिलहाल तो हम उन्हीं के संगीत से रचा एक गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। उस इस गीत को आप सुनिए, अंदाज़ा लगाइए, और जब आपको पता ही है कि अंदाज़ा आप लगा लेते हैं तो उसके बाद अपने संदेश आप हमें मेल करते हैं। हमारा मेल ID है ipradiodelhi@gmail.com। तो आपको सुनवा रही हूँ फिल्म बिन फेरे हम तेरे से, रफी जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत। पहचानिए और अपने जवाब हम तक

0: हाँ, और आप भी हमारे कमाल के दोस्त हैं। देखिए, हमने सिर्फ एक गीत आपको पहुंचाया अब तक, और ढेर सारे सही जवाब हम तक पहुंच गए। क्या बात है! तो आज हम बात कर रहे हैं उस सितारे की जिसका नाम है उषा खन्ना। आज ही के दिन यानी कि 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता मनोहर खन्ना गीतकार और गायक थे, यानी कि संगीत उनके लिए कोई भारी दुनिया नहीं थी, बल्कि बचपन से ही घर के वातावरण का हिस्सा था। और फिर आया साल 1959, फिल्म थी दिल देके देखो, संगीतकार थी उषा खन्ना, और यहीं से हिंदी सिनेमा को मिली एक ऐसी महिला संगीतकार जिसने आने वाले कई दशकों तक अपनी धुनों से श्रोताओं के दिल में जगह बनाई।
1: गीतों से गलियों से शबनम दूर रहे तो दूर रहे, पर तुम

जी हाँ दोस्तों, उषा खन्ना का जो शुरुआती सफर था वो आसान नहीं था। एक महिला के लिए उस समय फिल्म संगीत निर्देशन की दुनिया में अपनी जगह बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उषा खन्ना ने साबित किया कि प्रतिभा का कोई जेंडर नहीं होता। उषा खन्ना को फिल्मकार एस मुखर्जी का समर्थन मिला और दिल देखे देखो फिल्म उनके लिए फिल्म संगीत की दुनिया का दरवाजा खोलती थी। इसके बाद हम हिंदुस्तानी, शबनम, एक सपेरा एक लुटेरा, आओ प्यार करें, हवस, बिन फेरे हम तेरे, साजन बिना सुहागन, आप तो ऐसे ना थे, सौतन जैसी अनेक फिल्मों में उनके संगीत की छाप दिखाई दी। उनका संगीत केवल एक जगह के गीतों तक सीमित नहीं था, बल्कि हर जगह एक अलग ही खुशबू लेकर नजर आता था।

जी हाँ, उषा खन्ना का के जो संगीत था वो भी इसी तरीके की अलग अलग खुशबू देता था। चाहे रोमांटिक गीत हो, दर्द भरे नगमे हो, चुलबुले गीत हो, या फिर जीवन की सच्चाई को बयान करते गीत हो, उषा खन्ना ने हर रंग को अपनी धुनों में जगह दी। एक तरफ उषा खन्ना एक की धुन थी जो आज भी सुनते ही पुराने दौर की याद दिला देती हैं, और यही वो खासियत है उनके संगीत की। वो अपने समय से निकलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कह सकते हैं हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं। उषा खन्ना के जो संगीत सफ़र था इसमें महान गायक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का बहुत खास स्थान रहा है। रफ़ी साहब ने उनकी धुनों पर कई यादगार गीत गाए हैं, और आज जो मैं आपको गीत सुनवा रही हूँ उसमें बहुत सारे गीत रफ़ी जी की आवाज़ में भी हैं। और जब रफ़ी साहब की आवाज़ उषा खन्ना की धुनों से मिली तो कई ऐसे गीत बने जिन्हें आज भी पुराने फिल्म संगीत के प्रेमी बड़े प्यार से सुनते हैं। तो अगला जो गीत है वो रफ़ी साहब की आवाज़ में तो नहीं है, लेकिन लता जी की आवाज़ में है, और बहुत ही सुपरहिट गीत है फिल्म सौतन से।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार और आज हम सितारा चुनकर लेकर आए हैं। नाम है उनका उषा खन्ना। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के एक प्रकाशन के अनुसार उषा खन्ना ने अलग अलग भाषाओं की 150 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया था। आज जब हम महिला संगीतकारों की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उषा खन्ना ने ये रास्ता ऐसे समय में बनाया था जब फिल्म संगीत की दुनिया में पुरुषों का दबदबा था। उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया, उन्होंने लगातार काम किया। उन्होंने केवल एक दो फिल्मों से अपनी पहचान नहीं बनाई बल्कि कई दशकों तक अपनी धुनों को जीवित रखा और शायद इसीलिए उषा खन्ना की कहानी सिर्फ एक संगीतकार की कहानी नहीं, ये कहानी है प्रतिभा की, हिम्मत की, लगन की और अपने सपने पर विश्वास करने की। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंचे हैं, उनको भी बस अब शामिल करने का वक्त आ गया है। फिलहाल एक और खूबसूरत सा गीत सुलक्षणा पंडित और रफी साहब की आवाज़ में एंजॉय कीजिए।

पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। और अगला जो संदेश है वो पोटियल कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा जी का आया हुआ है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल जी हमें सुन रहे हैं। पोटियल कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साहिवीर जी हमारे साथ हैं। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम जी हमारे साथ हैं। अंबागढ़ी चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवाना, आयशा, सभी, अनस, रेहान है। और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवरोशन जी का एक और संदेश आया है। ये हमारे पास संदेश आकाश गंडई टिकरी पारा छत्तीसगढ़ से जागेश्वर और दीपक ऋषभ जी का आया है। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं ये। बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन जी हमें सुन रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा, ईशान जी हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं। पश्चिमी जी हैं वो चाईबासा झारखंड से, शिवागो, प्रेम, कपिल, शिवांश हमारे साथ हैं। रश्मि झरना भरत कुमार राजकोट गुजरात से हमें सुन रहे हैं। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जी जुड़े हुए हैं। और ये संदेश बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती का आया है। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है, ये आकली दीवान से आया है, भाई रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी जी का। अगला संदेश पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु जी का है। मुकेश गोस्वामी, मधु जी, उच्च भट्टी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। चिरमिरी कोलारसी, कालडी, इंद्रभान सिंह, अनुभव और ऋषभ जी हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ हैं। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर, ममता और कीर्ति हमारे साथ हैं। अगला संदेश संजय डिंगिया नमन जी का बागपत उत्तर प्रदेश से है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन शनिवास, सरफराज और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जॉन रिकेस्टो जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन जी का एक और संदेश है। संदीप मकर ज्योति जी जालंधर से हमारे साथ हैं। फारूक अली खान जी हमारे साथ हैं। भरत कुमार जी हैं। और ये जो संदेश है ये तुलसी मस्किन जी का एक और बिहारी कॉलोनी से पहुंचा है। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से निर्मोहन उषा चिल्लू नायक जी हमारे साथ हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहानकर निर्वला जी हमें सुन रहे हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी का एक और संदेश हम तक पहुँचा है। कुछ और भी संदेश हैं जिन्हें हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन आपको अभी कहीं जाना नहीं। 3 बजे आपका फेवरेट प्रोग्राम मैचिनी मेलेडीज़ भी मैं लेकर आने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत से उसमें गीत हैं, तो इसीलिए और साथ ही साथ एक सवाल भी रहेगा, तो तैयार रहिए कागज़ और कलम लेकर उस सवाल का जवाब देने के लिए। और अब जानते जाते हम एक और खूबसूरत सा गीत आपके लिए छोड़े जा रहे हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में, और उम्मीद करते हैं कि आज जो हम सितारा चुनकर लेकर आए थे आपके लिए वो उसके बारे में जानकारी, उनके गीत आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। 3 बजे मैचिनी मेलेडीज़ में मुलाकात होगी। तब तक इस प्रोग्राम से अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं, आइए अब आनंद लेते हैं प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज का। और इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। हालांकि अभी जो आप गीत सुन रहे थे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, लेकिन हमने दोबारा कदम रख दिया है क्योंकि आपसे वायदा जो किया था और आपको भी अपना वादा निभाना है, हमारे साथ इस सफर में भी हमारे हम सफर बनना है। और तैयार हो जाइए इस गीत के बाद, जो अभी आपको गीत सुनवाने जा रही हूँ मैं रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में, इस गीत के बाद एक सवाल आप सबकी नज़र रहेगा, उस सवाल का जवाब देना है आपको। तो कागज़ और कलम लेकर बिल्कुल अपनी कमर की पेटी कस लीजिएगा, इस खूबसूरत से गीत को एंजॉय कीजिएगा। और जवाब आपको कहाँ भेजना है, वहीं जहाँ आप हर रोज़ भेजते हैं, मेल आईडी IP Radio Delhi @gmail.com। फिलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, हमारी और आपकी मुलाकात जब सोमवार के दिन हुई थी तो हमने इस प्रोग्राम में बात करी थी कि हमारा जो गोल्डन ईरा था, 1950 और 1960 का जो दशक था, उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो फिल्में कैसे बनती थी, वाकई बहुत मुश्किल होता था। कुछ बातें हमने तब करी थी और कुछ अधूरी बातें हम आज करेंगे। पुराने ज़माने में, खासकर 1950 और 60 के दशक की जो हिंदी फिल्में थीं, उनको बनाना आज के मुकाबले में काफ़ी मेहनत और धैर्य का काम था। उस समय ना डिजिटल कैमरे थे, ना

चयन करते थे और उनके जो संवाद थे वो उनके लिए लिखे जाते थे। आपको याद है उस समय के जो हीरो हीरोइन और जो आखिर दूसरे जो कलाकार होते थे वो संवादों को याद करते थे। शूटिंग से पहले कई बार उनकी रिहर्सल होती थी क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ दृश्य दोबारा बनाना आसान या सस्ता रास्ता नहीं होता था। और उस समय शूटिंग फिल्म रील पर होती थी, कैमरे के जो सेलुलाइट फिल्म की रील लगाई जाती थी, एक बार रील खत्म होने पर ही उसे बदलना पड़ता था। तो इसके साथ ही साथ हमने आपसे वादा किया था कि आपसे हम एक सवाल भी पूछेंगे, तो तैयार हैं ना आप? आपसे जो हम सवाल पूछने जा रहे हैं वो गोल्डन इरा का सवाल तो नहीं है, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल है। और हम जानते हैं कि आप बहुत जीनियस हैं, जैसे ही हम सवाल आपसे पूछते हैं धड़ाधड़ जवाब आपके आने शुरू हो जाते हैं। आपको बताना है, देखिए सवाल पूछूं उससे पहले आपको बताऊं कि जितने भी अभिनेता अभिनेत्री होती हैं वो उनमें से कई ऐसे होते हैं जो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, इस तरीके से उनको एक टैग मिला होता है, उनको उनका हमारा मानना होता है कि अगर ये इस फिल्म में हीरो होगा तो 100% फिल्म, हीरोइन होगी तो 100% फिल्म हिट तो होनी ही होनी है। लेकिन कभी कभी पासा पलट भी जाता है, कोई अच्छे अच्छे जो सुपर स्टार होते हैं उनकी फिल्में भी पिटना शुरू हो जाती हैं। वक्त है भाई, वक्त वक्त की बात होती है। खैर कोई बात नहीं, सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्म देने वाले अभिनेता कौन है? सवाल बहुत आसान है, हम जानते हैं, और जवाब आपके पास बहुत ही आसानी से आपके पास मौजूद है। तो फिर देर किस बात की, हमारा मेल आईडी है ip.radio@gmail.com। एक बार फिर से सवाल दोहरा देती हूँ, आपको बताना है कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्म देने वाला अभिनेता कौन है? मैंने अभिनेता का नाम पूछा है और आपको हमें बताना है अभिनेता का नाम। इंतजार कर रहे हैं, तब तक एक और लता जी की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत और आपके संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं, उनको भी हम बीच बीच में शामिल कर देंगे।

भाई सवाल पूछते ही आपके जवाब ढेर सारे सही सही हम तक पहुंच गए हैं। या तो मैं बहुत आसान सवाल पूछती हूँ या फिर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। धड़ाधड़ आपके सवाल, जो हमने सवाल पूछा उसके जवाब आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक जितने भी जवाब आए हैं सब ठीक आए हैं, सब बिल्कुल सही आए हैं। एक खास संदेश हमारे पास है, पहले हम उसको पढ़ दें। आपके भी संदेश हम ले रहे हैं। ये गाज़ियाबाद कौशाम्बी से हमारे पास संदेश आया है। प्रीति जी ने शालिनी जी को बर्थडे विश किया है और प्रीति जी शालिनी जी को कहती हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं, और ढेर सारा उन्होंने प्यार और शुभकामनाएं उनको दी हैं। तो चलिए हमारे तरफ से भी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से